एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत सन 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र

0: पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

训等。हम जितने चाहें उतने लोगों से प्रेम कर सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक दिन हम प्रेम के मामले में दिवालिया हो जाएंगे। जहां तक प्रेम का सवाल है, हम कभी दिवालिया नहीं हो सकते। ये विचार ओशो का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं झरोखा। इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 308। 6:35

संगीत सरिता इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 11। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:07:30 पर। युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8:00 सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे भाग 45 और यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक में आप सुनेंगे नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। केंद्रित होगा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण इस कार्यक्रम का होगा रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00 और दिन में 12:00 हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। 1:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से दिन में 1:00 और श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15। 2:30 यानी कि 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 सुनिए कार्यक्रम हेलो सहेली, संवादक दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4:00 सुनिए पिटारा गीतों भरी कहानी। कहानी आवाज ही पहचान है, लेखन और वाचन अरुण शेखर का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसी बीच 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार। झरोखा सुनेंगे आप शाम 6:30 पर, जिसमें आपको शाम में होने वाले कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों

जानकारी दी जाएगी। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर, और जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00, 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का भाग 10, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हवा महल में सुनिए नाटिका शकुन का शीनू, मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुदगुदी, हिंदी रूपांतर एस ए हुनगुंद, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर, समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00, इसी के बाद आप सुनेंगे छायागीत कार्यक्रम रात्रि 10:00, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात, और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 308। आज आप सुनेंगे लंका कांड।

मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूं। पुलस्त ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधतावश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब अपनी करनी के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ हैं और किराना घराने की गायकी पर चर्चा हो रही है इन कड़ियों में। शकुंतला जी, पिछली दो कड़ियों में हमने आलाप के बारे में बात की, आज किराने घराने की जो गायकी है उसमें जो तान की विशेषता होती है, इसकी तान कुछ अलग ही होती है। हाँ। क्या अलग होती है, तो कैसे अलग होती है, जरा बताइए।
2: बहुत ही प्यारा सा सवाल आपने पूछा, क्योंकि तान को ज्यादातर लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन तान जहाँ ले जाती है
1: जी,
2: उस पे तो हम हमारा भाव दिखा नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप आना चाहिए।
1: अच्छा।
2: किराना घराने की तान जो है उसमें स्पष्टता, उसकी स्पष्टता के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तान की जो स्पष्टता एक विशेषता इस घराने की है, प्रत्येक स्वर स्पष्ट सुनाई देता है तान में।
1: अच्छा।
2: किराने घराने की तान में कोई भी स्वर ऐसा धुंधला या स्पष्ट नहीं होता, हर स्वर अपनी शुद्धता और पहचान के साथ सुनाई देता है।
1: क्या बात।
2: तान में स्वर शुद्धता सर्वोपरि होती है।
1: बिल्कुल।
2: तेज गति में भी स्वर अपनी सही जगह श्रुति पर लगाए जाते हैं। क्या है, तान में स्वर यहाँ वहाँ जाने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन किराना घराने में वही हम देखते हैं कि तान में हर एक स्वर पक्का उसकी जगह पर लगना है।
1: अच्छा।
2: झटकेदार नहीं तान, तो मींड और स्वर के संबंध में जो इसके साथ सहज रूप से जो आगे जाती है, और ये तान बहुत मधुरता से आती है। तानों का उद्देश्य केवल कौशल दिखाना इतना ही नहीं है, तो राग का स्वरूप जारी रखना, राग का भाव को बनाए रखना, और प्रत्येक तान राग के एक व्याकरण के अनुरूप होने चाहिए।
1: बराबर।
2: इसका कटाक्ष यहाँ पे हम रखते हैं। किराना घराने की और एक तान के बारे में मैं बोलूंगी कि केवल गति ही नहीं बल्कि भाव ये तान में होता है, भाव भी होता है।
1: जी जी।
2: ताने का राग और भावाभिव्यक्ति, इसके लिए ही ये गायकी ज्यादा प्रभावशाली

0: बनी है।
1: जी
0: अभी देखो सरगम तानों का एक सुंदर प्रयोग हमारे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब ने किया है।
1: जी जी
0: विशेष रूप को विकसित किया है उन्होंने और तानों में भी प्रत्येक स्वर स्पष्टता और संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी
0: उसके बाद सरगम डालने की प्रथा हमारे विदुषी प्रभा अत्रे ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यहाँ तानों की गति नियंत्रित रहती है और अनावश्यक तेजी के बजाय स्पष्टता, मधुरता, संतुलन, इन सब बातों का अधिक महत्व यहाँ रहता है।
1: जी, जी, जी।
0: श्रोता के लिए सहज श्रवणीय गाना अगर बनना है तो स्पष्ट उच्चारण और स्वच्छ प्रयोग के साथ श्रोता तानों के प्रत्येक स्वर को एकदम अच्छी तरह से सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई श्रोता जो रहता है ना, वो गायक से भी ज्यादा उसका ज्ञान होता है संगीत के बारे में। वो गा नहीं सकता लेकिन समझ सकता है। ऐसा जो जानकार कहते हैं हमारी भाषा में, जानकार श्रोता है ना, उनके लिए तान का एक हर एक सुर, कभी भी इधर भी तान का सुर गया, अलग लिया, तो तुरंत पकड़े जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तान सुननी है तो आप एकदम बढ़िया तान हीराबाई बड़ोदे करके, स्वच्छ, दानेदार, बहुत माधुर्य सब है उसमें,
1: जी, जी।
0: क्या नहीं है। और राग प्रधान, एकदम राग को बिना छोड़े, एकदम सिंपल और बहुत ही बड़ी ध्यान।
1: शकुंतला जी, ये तान के बारे में जो बातें आपने बताई, इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप जो हम रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं हीराबाई बड़ोदेकर जी, क्या उसकी क्या खासियत है जरा बताइए।
0: हीराबाई का सुर एकदम मुलायम, एकदम गोड़वा जो उसमें है,
1: मिठास, उसमें
0: मिठास जो है,
1: और
0: बहुत ही प्यारा सुर के बारे में पक्का हर एक जगह पर, और उसका जो लय है वो भी बहुत अच्छी तरह से जाती है। तान सुननी है और तान सीखनी है तो हीराबाई को ही सुनना है।
1: आइए सुनते हैं।

0: जयन जी
1: जी,
0: कोई कोई बातें हम बोल के नहीं कह सकते हैं, इतना डेप्थ उनकी आवाज में रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तान के बारे में और सुरेलता के बारे में जो हीराबाई के पास था
1: जी जी जी,
0: वो एकदम अपार था, बहुत ही अच्छा था
1: जी जी। और इसे सुनते हुए जो गाना याद आ रहा था तो उस गीत की झलक सुनते चलें, चित्रलेखा फिल्म का गाना है, मनरे तू काहे न धीर धरे।
0: वाह, बराबर हमारे घराने का धीर धरने का,
1: हाँ,
0: जो
1: हाँ,
0: ये है, ये गाना बहुत ही उसके लिए फिट है
1: जी। चलिए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना।

रोहिदास परब। हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

101 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दोस्त सावन कुमार हाजिर हूं आप सभी का अपना प्रोग्राम लेकर के। कार्यक्रम का नाम है नमस्कार अलवर। साथियों, मैं बहुत अच्छे से हूं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे। रेडियो प्रोग्राम्स का मजा ले रहे होंगे, अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आज पूरा विश्व जो है वो सतत विकास की बातें कर रहा है। उसकी जड़ें भारतीय चिंतन में हजारों वर्षों से गहराई से समाई हुई हैं। आधुनिक दुनिया के लिए सतत विकास पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की एक रणनीति हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये कोई नया सिद्धांत नहीं है बल्कि एक प्राचीन जीवन शैली और सांस्कृतिक चेतना है। भारतीय दर्शन में प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि माता और ईश्वर का रूप माना गया है। सतत विकास के गूढ़ अर्थ, इसके दार्शनिक आधार, वैदिक साक्ष्यों और आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता को सरल और रुचिकर रूप से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज के कार्यक्रम की जो थीम है वो यही है। यहाँ आप लोग सही सोच रहे हैं, भारतीय चिंतन और सतत विकास। सतत विकास क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी आवश्यकता है, हमारे भारतीय चिंतन में किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ स्टेप बाय स्टेप, इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, जब हम बात करते हैं कि सतत विकास का अर्थ क्या है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र में सतत विकास का जो मतलब है वो होता है वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को उस तरह से पूरा करना कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से कोई भी समझौता ना करना पड़े। लेकिन भारतीय चिंतन इस परिभाषा से 2 कदम आगे चला जाता है। यहां पर सतत विकास का अर्थ केवल संसाधनों को बचाना नहीं बल्कि संसाधनों का सम्मान करना है। यानी कि आधुनिक मॉडल अधिकतम उपभोग पर बल देता है जबकि भारतीय चिंतन न्यूनतम आवश्यकता और अधिकतम संयम का संदेश देता है। पश्चिमी दृष्टिकोण जहां पर पर्यावरण को बचाने को अपना अधिकार और आवश्यकता मानता है, वहीं भारतीय दर्शन इसे मनुष्य का धर्म मानता है। वहीं अगर हम दार्शनिक आधार पर देखें तो प्रकृति और पुरुष का संबंध के बारे में जब बात करते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं, तो भारतीय दर्शन विशेषकर सांख्य और वेदांत हमें यह सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हम उसी पंच महाभूत से बने हैं जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि प्रकृति का विनाश वास्तव में उसका अपना ही विनाश है, तब शोषण की गुंजाइश नहीं बचती है। भारतीय चिंतन में ईशावास्य मिदम सर्वस्व की धारणा है, अर्थात इस सृष्टि के कणकण में ईश्वर का वास है। इसलिए जब हम किसी वृक्ष को काटते हैं या नदी को प्रदूषित करते हैं तो हम केवल पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहे बल्कि ईश्वर का अनादर कर रहे हैं। इसी प्रकार से साथियों, जब हम बात करते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में सतत विकास के क्या प्रमाण मिलते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय चिंतन में सतत विकास की, और इसमें हमने बात की कि प्राचीन ग्रंथों में सतत विकास के प्रमाण किस प्रकार से मिलते हैं। तो साथियों, जब बात देखते हैं हम लोग इस बात को, तो भारतीय वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण संतुलन के ढेरों प्रमाण मिलते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन काल से ही पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति जागरूक थे। अगर हम अथर्व वेद को देखें तो अथर्व वेद का भूमि सूक्त पर्यावरण की एक गीता के समान कार्य करता है। अथर्व वेद का भूमि सूक्त पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। इसमें ऋषि कहते हैं, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीयः, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। एक पुत्र अपनी माँ का शोषण कभी नहीं कर सकता है, वो केवल उसकी सेवा कर सकता है। इसी सूक्त में आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी हम तेरे शरीर से जो कुछ भी खोद कर निकालते हैं वो पुनः शीघ्र भर जाए, हम तेरी मर्म स्थली पर कभी चोट न पहुंचाए। ये पंक्तियां आज के खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहनों पर सीधा मार्गदर्शन देती है। वहीं ईशावासी उपनिषद जो है, इसमें संतुलित उपभोग का जो सूत्र है वो बताया गया है। इस उपनिषद का पहला मंत्र ही सतत विकास का सबसे बड़ा सूत्र देता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रतः कस्य विदस्य धनम्। यानी कि त्यागपूर्वक उपभोग करो, किसी दूसरे के धन की लालसा मत करो। ये श्लोक हम लोगों को सिखाता है कि पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। और यजुर्वेद की शांति प्रार्थना जब हम देखते हैं तो हर शुभ कार्य के अंत में

शांति पाठ किया ही जाता है, ये सभी को पता है, जिसमें केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति की शांति की प्रार्थना होती है। आकाश शांतिप्रद हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो और औषधियां शांत हो। तो उस तरीके से जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सतत विकास के जो प्रमाण हैं इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से मिलते हैं। वहीं जब हम बात करें कि जीवन शैली में जो सतत विकास है वो किस तरीके से हमारे रचा बसा हुआ है, तो हम इस बात को पाते हैं कि भारतीय समाज में सतत विकास किताबों तक सीमित कभी रहा ही नहीं। इसे लोक परंपराओं, पर्वों और दैनिक दिनचर्या में जोड़कर हमारे साथ में घोल मिल दिया गया, ताकि आम इंसान भी अनजाने में पर्यावरण की रक्षा कर सके। अब देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है वृक्षों और पौधों की पूजा की जो परंपरा है, यानी कि पीपल, नीम, तुलसी और बरगद जैसे वृक्षों को पूजनीय बनाया गया। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और तुलसी में असाधारण औषधीय गुण है। पूजा के बहाने इनका संरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया। इसी प्रकार से नदियों को मां का दर्जा दिया गया। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों को लोक माता कहा गया। नदियों में कचरा डालना धार्मिक रूप से पाप माना गया। गाय, हाथी, गरुड़, यहां तक कि चूहे और सर्प को भी देव देवताओं के वाहनों के रूप में मान देकर उनका संरक्षण किया गया। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना देना हर भारतीय परिवार, हर घर की परंपरा रही है। वहीं पर जीरो वेस्ट जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। पुराने कपड़ों से गुदड़ियों को बनाना, धातु मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना, पत्तलों पर खाना खाना, ये सब भारतीय घरों में रिसाइकलिंग के बहुत ही सहज उदाहरण रहे हैं। तो देखिए, इसके बारे में और भी सब बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं इससे पहले ये गीत।

तो साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे सतत विकास के विषय में। तो साथियों, जब हम देखते हैं कि आधुनिक दौर में और पश्चिमी दौर में दोनों के अंदर भारतीय जो सतत विकास है उसका दृष्टिकोण क्या होता है, तो देखिए आधुनिक दौर में पश्चिमी बनाम भारतीय दृष्टिकोण की जब भी हम लोग गणना करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो हम ये पाते हैं कि आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, तब ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि पश्चिमी मॉडल और भारतीय चिंतन में अंतर कहाँ कहाँ पर और क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो आता है दृष्टिकोण। जब भी हम देखते हैं पश्चिमी मॉडल जो है वो बात करता है मानव केंद्रित, यानी कि प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है, इस चीज़ के ऊपर बात करता है, जबकि भारतीय चिंतन के अंदर यही जो चीज़ है बिल्कुल अलग रूप में सामने आती है हमारे सामने, और वो सर्व केंद्रित व्यवस्था जो है उसके ऊपर बल देती है। इसके अंदर मनुष्य प्रकृति का एकमात्र हिस्सा है, बहुत छोटा सा, प्रकृति से वो नहीं है बल्कि मतलब प्रकृति जो है वो मनुष्य से नहीं है बल्कि मनुष्य प्रकृति से है। इसी प्रकार से दूसरी चीज होती है लक्ष्य। जब हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि और असीमित विकास ये पश्चिमी मॉडल के लक्ष्य हैं सतत विकास को लेकर के, तो भारतीय संस्कृति के अंदर भारतीय चिंतन हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि सर्वांगीण कल्याण, यानी कि प्रकृति से सामंजस्य बना करके उसके साथ संतुलन बना करके चला जाए। इसी प्रकार से साधनों के बारे में जब बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी और कानूनों के द्वारा नियंत्रण जो है वो पश्चिमी मॉडल के अंदर अपनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर भारतीय चिंतन के अंदर नैतिक मूल्य, धर्म और आत्मानुशासन, इन सब चीज़ों से हर चीज़ को जोड़ करके इस चीज़ को हमारे जो जीवन शैली उसमें रच बसा दिया गया है, ताकि हम इन चीज़ों को सम्मान करना अपने आप ही सीख जाएँ। प्रकृति से संबंधों के बारे में जब हम देखते हैं तो प्रकृति पर विजय की बात कही जाती है पश्चिमी मॉडल में हमेशा ही, जबकि हमारे यहाँ पर प्रकृति से सामंजस्य बनाने की बात कही जाती है, हम लोगों को हमेशा उसके साथ चलना होता है, इस चीज़ की बात कही जाती है। तो चलिए इसके बारे में और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए एक गीत।

तो साथियों, अब हम लोग बात करते हैं भारतीय चिंतन और 17 सतत विकास के लक्ष्य जो कि यूएन के हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया है। अगर हम गहराई से देखें तो ये लक्ष्य भारतीय चिंतन के प्राचीन सिद्धांतों का ही आधुनिक रूपांतरण है। इसमें सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है 1 और 2, यानी कि गरीबी और भूख का अंत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी भावना का, इसी चीज का प्रतिनिधित्व जो है ये चीज करती है। वहीं इसका जो दूसरा नंबर की चीज है वो आती है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना का जैन और हिंदू दर्शन का सिद्धांत इसी का आधार है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आती है जलवायु, जल और स्थल पर जीवन। यहां पर जब भी हम अपने भारतीय चिंतन की बात कर रहे हैं तो पंच महाभूतों की पवित्रता को बनाए रखने का वैदिक संकल्प पूरी तरह से इन लक्ष्यों से मेल खाता हुआ हम लोगों को प्रतीत होता है। अब साथियों, हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत और वैश्विक नेतृत्व के विषय में। आज भारत अपने इसी प्राचीन चिंतन के आधार पर विश्व मंच पर सतत विकास का नेतृत्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सूर्यपुत्र होने की हमारी प्राचीन धारणा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया को एक मंच पर लाया है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया लाइफ मिशन पूरी तरह से भारतीय चिंतन पर आधारित है। ये माइंडलेस कंजप्शन की जगह पर माइंडफुल यूटिलाइजेशन की वकालत करता है। एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड, ये विचार भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का ही एक व्यवहारिक रूप है। तो साथियों, इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सतत विकास के विषय में। साथियों, जब हम देखते हैं कि सतत विकास, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में हम लोग ये पाते हैं कि सतत विकास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केवल सरकारों को, कानूनों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीतियों से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए मानव की चेतना और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। पश्चिमी तकनीक और आधुनिक विज्ञान ने हमें भौतिक सुख तो दिए हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी को विनाश की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में भारतीय चिंतन केवल एक विचार नहीं बल्कि एक दिशा निर्देश है। भारतीय चिंतन हम लोगों को यह सिखाता है कि विकास और प्रकृति संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम प्रकृति को अपना दास मानने की बजाय अपनी माता नहीं मानना शुरू करेंगे, तब तक कोई भी सतत विकास का मॉडल सफल नहीं हो सकता है। अब समय आ गया है कि दुनिया प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कदम पीछे मोड़कर भारतीय दर्शन की इस महान सीख को अपनाए कि प्रकृति का रक्षण ही मानव का रक्षण है।

साथियों, देखिए आपसे बात करने का तो बहुत मन है, लेकिन अब घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही है कि आपसे ले विदा तो जा रहे हैं इसी वादे के साथ में कि एक बार फिर से आप सभी के साथ में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपने दोस्त सावन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन साथ में पर्यावरण संरक्षण करते रहिए, अपने पृथ्वी को बचाते रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए, रेडियो प्रोग्राम्स का मजा लेते रहिए, जीवन में कुछ न कुछ अच्छा और सकारात्मक करते रहिए, अच्छे काम कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार अलवर। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

आतिफ असलम, श्रेया घोषाल और साथियों को आपने सुना फिल्म प्रिंस में। शब्द रचना रही समीर की और संगीत से संवारने का काम किया सचिन गुप्ता ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गब्बर इज बैक फिल्म से आपने गीत सुना नेहा कक्कर यो हनी सिंह और साथियों की आवाज में। और लीजिए फिल्म संगीत का यह अगला नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं कुणाल गांजावाला।

लीजिए, फिल्म संगीत का ये अगला नगमा जो है वो आपको सुनवा रहे हैं एकॉन, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक और साथियों की आवाज में फिल्म रावण से। शब्द रचना है विशाल ददलानी की और संगीत से संवारने का काम किया है विशाल शेखर ने।

श्रुति पाठक, विशाल ददलानी, एक और साथियों की आवाज में गीत आपने सुना फिल्म रावण से। शब्द रचना रही विशाल ददलानी की और संगीत से संवारने का काम किया विशाल शेखर ने।

और लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धूम 2 से, आवाजें हैं विशाल ददलानी डोमिनिक सिजेरियो की और शब्द रचना है आसिफ अली बेग की और संगीत से संवारने का काम किया है प्रीतम ने।

विशाल ददनानी, डोमिनिक सेरेजो और साथियों की आवाज में यह गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धूम 2 से। शब्द रचना रही आसिफ अली बेग की और संगीत से संवारने का काम किया प्रीतम ने।

आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी, सदाबहार, सदा आपके साथ।
1: अभी आपने सुना फिल्म संगीत, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया।

0: सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
5: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पत्तनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पत्तनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीन स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ी

0: को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अल्पर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओं, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे।

0: पर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नजर में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर फाइन सर।
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
3: I like playing, sir.
5: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
6: Sir, I like singing.
7: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
2: Yes, sir.
5: We like.
1: Lovely butterflies?
2: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
2: Yes, sir. We like it.
1: That's very nice, children.
5: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
2: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
2: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
2: Like us?
1: Would you like to listen?
2: Yes, sir.
5: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
2: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
2: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear.
2: I see a big white bear.
1: Looking down at me.
2: Looking down at me.
1: As I lie on my

0: न्यू दिल्ली इंडिया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
3: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: सच में
2: वाह वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
3: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
2: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
3: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
2: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
3: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
2: हाँ।
3: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
2: अरे हाँ,
3: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
2: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
3: मालूम नहीं,
2: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
3: आगे आगे आ जाओ, आ जाओ। चलो,
4: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
5: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
4: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
6: उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
5: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
4: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
7: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश

0: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
1: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
2: होमी, ओ होमी।
3: जी माँ, आती हूँ।
2: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
3: क्या बात है माँ?
2: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
3: जी माँ, बिल्कुल।
2: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
3: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
2: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
3: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
2: अरे
3: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
2: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
3: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
2: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
3: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
2: कुछ नहीं होमी, बस करो।
3: माँ सुनो तो। अरे
0: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
4: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
1: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहीं,
0: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
1: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
0: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
3: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, अब बैठो, यहाँ बैठो।
3: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी, जरा इसे देखो।
3: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
3: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
3: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनत कश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारी

0: ही से उकेरा है और ये लिखा है ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो उमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
3: मानेकशा स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर दी बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
2: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
3: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
2: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
3: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
4: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
2: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
3: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1947

0: 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, माफ कीजिएगा, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18वीं ब्रिक्स समिट कल से नई दिल्ली में। सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान 6 नगर निगम सहित 147 निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस चरण में 4,474 वार्डो के लिए 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 87,60,000 से अधिक मतदाता, 18,200 से ज्यादा उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 54,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि वहां चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। दिव्यांग से लेकर बुजुर्ग मतदाता सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
1: शहर के विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का आना लगातार जारी है। कहीं मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी है तो कहीं इलाकों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी अपने अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाला और नागरिकों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: पाली नगर निगम के लिए भी आज चुनाव हो रहा है। चुनावी माहौल का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।
2: दूसरे चरण में पाली, बाली, खुडाला, फालना, सादड़ी, तखतगढ़ और सुमेरपुर में मतदान किया जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में युवा, महिला, पुरुषों सहित हर वर्ग में उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई है। बूथों पर कहीं प्रवासी तो कहीं मॉर्निंग वॉक कर मतदाता मतदान कर रहे हैं। नगर निगम पाली के 65 वार्डों में 167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने और निष्पक्ष रूप से अपने शहर की सरकार के चयन में भागीदारी निभाने की अपील की।
3: सारे जिलों में जो भी नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं वहां पर शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान का उपयोग करें। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मतदान स्थल पर और मतदान स्थल के बाहर भी जो है पुलिस प्रबंध किया गया है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो वोटर हेल्प डेस्क पर भी जो है आपकी मदद के लिए सन्नद्ध हैं। तो मेरा यही आपसे अपील है कि अपने मताधिकार के इस राष्ट्रीय कर्तव्य का जो है निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
0: राज्य के 309 नगर निकायों में मतदान के बाद वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। वहीं अध्यक्ष पद का चुनाव 21 सितंबर को किया जाएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत मंडपम में होने वाले 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान श्री

0: पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस बीच आज नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आयोजित किया जा रहा है। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापारी, मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सावधानी और सतर्कता ही पशुओं में लंपी रोग के बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ये बात जयपुर में लंपी स्किन डिजीज की स्थिति और नियंत्रण उपायों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में रोग के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और अब तक 87% से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में लंपी रोग से 10,403 पशु संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 6,905 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को टीकाकरण तेज करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संक्रमित पशुओं को अलग रखने के निर्देश दिए। इधर सवाईमाधोपुर में आज पशुओं में बांझपन की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिले के 4 ब्लॉक्स में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में गाय और भैंस सहित अन्य मवेशियों में बांझपन की जांच कर उपचार किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविरों का लाभ उठाने की बात कही है। राजस्थान मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार करेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रवर्तन, आसूचना, सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण, नशे की मांग और हानि को कम करने तथा क्षमता निर्माण पर समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अफीम, डोडा पोस्त और एमडी जैसे मादक पदार्थों की जब्ती में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अब तक करीब 730 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है और 93 ड्रग किंगपिन गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 12 संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति शिविरों और जागरूकता गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला कल से शुरू होगा। मेले में भाग लेने के लिए पदयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं के सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से शेरपुर तिराहे तक का किराया 10 रुपए रखा गया है।
1: रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मेले का रंग जमने लगा है। प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं के व्यापक प्रबंध के अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री रखने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के बाद रोडवेज की बसों में या श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं रेलवे की ओर से भी मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन की व्यवस्था की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: इधर जैसलमेर में रामदेवरा मेले के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी है। मुख्य मेला 13 सितंबर को भरेगा। वहीं बाड़मेर के सेड़वा इलाके में आज से गुरु जम्बेश्वर मेला आयोजित किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में लगी राजस्थान की पोषण स्टॉल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और स्टॉल की सराहना की है। वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान की ओर से सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान थीम पर यह स्टॉल लगाई गई थी। इसमें मातृत्व पोषण के कैश प्लस मॉडल के साथ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत दूध, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रिकिट और शाला पूर्व शिक्षा के नवाचार को प्रदर्शित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18वां ब्रिक्स समिट कल से नई दिल्ली में। सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
1: की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, विचारक और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में जन्मे विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया। सादगी, त्याग और मानव कल्याण पर आधारित उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं।

इस फिल्म का गीत आपने सुना गजेंद्र वर्मा की आवाज में। असीम अहमद अब्बासी ने इसे लिखा था, गजेंद्र वर्मा का संगीत। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं नौटंकी साला। इस फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाजों में, रोचक कोहली, गुरप्रीत सैनी और आयुष्मान खुराना ने इसे लिखा है। संगीत है रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का।
1: आज

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: काय पोचे, इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म का गीत तोजी रैना और रेखा भारद्वाज की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पांच बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान, चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

11 साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

अपनी किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

जिसने सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता, उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया, वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

हिंदी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

जहाँ गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: परवाद

0: एफएमएन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं
1: आवश्यक संदेश।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी

0: भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रेले प्रसारण।
5: हेलो
6: जी, हेलो फरमाइश।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रेलवे प्रसारण।
4: हेलो
5: जी, हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
5: नमस्कार मंदाकिनी जी।
4: नमस्कार। अरे कौन बोल रहे हैं आप?
5: जी मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
4: कैसे हैं?
5: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
4: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
5: जी मैम अभी तो खाली है, बस आज का सीजन चल रहा है अभी।
4: अच्छा
5: जी, अभी गाँव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
4: जैसे क्या काम कर रहे हैं गाँव में? कौन सा गाँव है आपका?
5: जी मेरे गाँव का नाम कीरतपुरा।
4: कीरतपुरा
5: जी।
4: अच्छा कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
5: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गाँव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
4: अच्छा,
5: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
4: अच्छा, ऐसी मान्यता है, ऐसा तो, लोग कहते हैं।
5: जी मैम वहाँ उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मी के सीजन पर उनको इतना पसीना निकलता है।
4: अच्छा अच्छा,
5: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
4: अच्छा कब हुई थी?
5: जी मैम 25 जून को हुई थी आपसे।
4: अच्छा आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
5: नहीं मैम तारीख याद है, आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
4: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में? कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
5: जी आपका सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
4: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है?
5: जी मैम।
4: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को लेकर। और सखी सहेली में आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
5: जी मैम हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से सखी सहेली सुन रहे हैं। और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से भी मिले लेनी चाहिए।
4: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
5: जी
4: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
5: जी मैम खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
4: खाना खाना आता है बस, है ना?
5: जी मैम।
4: हाँ और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी, ऐसा?
5: ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
4: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
5: जी मैम फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
4: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। तीन महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को, तीन महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: गाना सुनना है दीदी, आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का, मेरी बेटी आई थी कल तो उन राखी बांधने के लिए, तो मेहमान का खाना बनाया दीदी, जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पर आई थी।
0: अरे वाह,
1: हाँ बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने।
0: थक गई फिर?
1: थक गई यार, मेरे भैया अपन आए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी, हेलो फरमाइश सुनते हो दीदी।
0: अच्छा
1: हाँ, चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती?
1: चालू रहता है, सुबह हमारे अमरावती ये केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: हाँ।
1: और 11 बजे से हमारा उम्मीद भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर, आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी,
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो थकान रोज इसमें रखती दीदी, रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ।
1: उनको इससे ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो।
1: दूर हो जाती दीदी।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी।
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो,

0: ऐसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, ना कोई फरियाद, ना कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
2: जी जी।
1: क्या कर रहे हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: घनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, सारे गाने मैडम उनके तो
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने ला के देते थे आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
2: वो गाड़ी आती थी चार पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
1: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जब भी तो हमने जानना चाहा।
2: चाबी की मोटर आती थी ना, जो उसको चलाते थे अपन।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
1: उसको देख कर तो मजा आता था।
2: बचपन की यादें में कभी बोला नहीं सकता मैडम।
1: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं, क्या ला के देते हैं उनको खिलौने? ला के देते हैं?
2: शादी नहीं मैडम मेरी।
1: अरे आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए, तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
2: जी जी सही।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
2: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है। और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गरमा गरी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए, इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने के टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, खाना अलग अलग किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है?
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ, सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ।
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ कैसे बटाते हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: सही बात है ना, और जिनको खाने का शौक होता है ना तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
1: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ, मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन है उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी।
0: अच्छा हाँ,
1: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं और वो सवारी निकल रही है आज।
0: वाह बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू

0: जो चलेंगे।
1: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब नहीं 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए।
0: बहुत बड़ी बात, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
1: जी जी मैडम
0: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है।
0: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में, चलिए आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी।
0: अच्छा अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, एक घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ, मतलब एक महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: विविध भारती के जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में?
1: बिल्कुल, किश्तियाँ बहुत जारी है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने एक ही दिन कर दिया, ये आप दो दिन ही किया जाए।
0: चलिए तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्ट

0: कंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे मतलब हमारे पास दो तीन कारीगर है और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाय गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है।
1: हाँ हाँ, ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद है बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए।
0: आज गीत है ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, क्योंकि जय किशन साहब की पुण्यतिथि है
1: जी जी,
0: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वह नहीं सुनवा दीजिए और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
1: चलिए तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
2: झूमता।

0: हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान है। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम।
0: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है।
1: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका शहर?
1: मैडम
0: आपका शहर बताइए।
1: बहुत ही बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
1: बारिश अभी हुई नहीं है, एक महीने से कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है।
0: बिल्कुल सही
1: अभी
0: कहा।
1: और आसार है, झीलें अभी खाली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती
1: जी।
0: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने?
1: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम।
0: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना?
1: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
0: हाँ हाँ, खैर घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
1: जी अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन महाकाल की नगरी।
0: अच्छा,
1: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया। बड़ा ही अच्छा लगा।

0: वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
1: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
0: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर, मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुँचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ है ना।
0: अभी वापिस मानस बन रहा है इसी महीने में।
1: चलिए तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
0: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है। फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार है।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतने खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामबा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, इसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में चूंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर। और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनौरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते होंगे।
1: बिल्कुल मैम, यहाँ पर

0: टूरिस्ट में जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं जो श्रद्धालु ज्यादा हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
1: हाँ खैर वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहां तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
0: जी मैम, मैं वहां पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
1: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
0: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, उनकी जो दुखद समस्या है वो सुनाने के लिए गुरुजी
1: जी
0: को रहते
1: जी
0: हैं।
1: वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
0: वैसे तो मैम मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
1: अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी
0: मैम
1: बात।
0: हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरका,
1: क्या बात है। चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए आप कौन सा गाना सुनेंगे।
0: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सुनगमा तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तुम ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से?
1: जी, मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से राम बाबू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी, भैया, बाबा।

0: भी परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना
0: जी।
1: तो
0: और हंसी खुशी के साथ आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए, आपसे मतलब बात करी ना उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए, बोले काका है मतलब वहाँ का डाल दीजिए, जी वहाँ डाल दीजिए, बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैं ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको, बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती का।
1: अरे
0: हाँ जी जी जी बिल्कुल। उनने दोनों मैम ने मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा तो उन दोनों ने लिया एड्रेस, बोले हम भी डालेंगे पत्र।
1: क्या
0: हम भी बहुत सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम।
1: उन्होंने ऐसे कहा जो पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं।
0: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल
1: जी। बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं और जिंदगी बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
0: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है।
1: अरे अच्छा, आप
0: हमारा बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
1: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई बात याद है आपको ऐसी?
0: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
1: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
0: अपने ये ड्राई क्लीनिंग का लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है, आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
1: चलिए अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी, देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष
1: तो
0: जी?
1: हम विविध, हाँ जी, अच्छे हैं मैम। तो
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है।
1: बिल्कुल
0: पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो
0: कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे, उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ़ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना? बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गाज सब लगाना ही पड़ता है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। तो
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: हमें पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना? और जब अंतिम दिन उन्होंने
1: बिल्कुल
0: जब
1: जी, बिल्कुल
0: कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें।
0: हाँ
1: हाँ, बराबर पहचाने। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो
0: लेकिन उसका इलाज करते
1: मैं,
0: समय कठोर
1: हाँ
0: बनना पड़ता है ना?
1: बिल्कुल, बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: तो ये
0: पसंद का
1: गीत।
0: गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुना गया, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, ये रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभनी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं भाई।
0: अच्छा, स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली फलो फरमाइश, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभनी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है।
0: क्या बात है। कितना
1: हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है। कई
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। चाहिए,
0: चलिए अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
1: हाँ जी हाँ, चाहिए आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा रिजिट भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए हमको भी समझो कुछ होता, उन्हें नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इतनी खुशी हो रही है कि जिसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ भाई। अच्छा, प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मैं लेने का।
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नई मंजिल है, ये नए रास्ते, कांटों से है इसे बचा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं, परभनी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभनी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभनी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभनी के सभी नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभनी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उर्स के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है, चाहे वो परभनी हजरत तुराबुल हक शाह के दरगाह का उर्स यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभनी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और वैसे बहुत धन्यवाद।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेकी।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है रोजाना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा।

0: करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे मुस्कान एल्बम से, उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवु ओजोफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के

0: कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत दूसरा आदमी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जो कहीं ना कहीं संबंधित है आँखों से, नजरों से, नैनों से।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। आइए सुन लेते हैं ये आवश्यक संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म से। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और उन्हीं का संगीत।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे लक बाय चांस फिल्म का नाम, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम, जयदीप साहनी ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती, प्रोग्राम सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 147 निकायों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। इनमें 6 नगर निगम जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और पाली शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में वोट डाले जा रहे हैं। लोग लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इनमें जेंजी से लेकर बुजुर्ग मतदाता शामिल हैं। वहीं वोट डालने को लेकर महिलाओं में भी विशेष उल्लास है। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर वोटर भी पूरे उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में मतदान किया। उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अधिकाधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में वोट डाला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने भी जयपुर में मतदान किया और लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस बीच जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस चरण में 4,474 वार्डों में मतदान हो रहा है, जहां 83,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण में 18,200 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी 309 नगर निकायों में मतदान पूरा होने के बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी, जबकि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 सितंबर को

मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संघर्ष, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। वहीं श्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान के साथ भी बातचीत करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इससे विश्व कल्याण की राह खुलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दो दिन के शिखर

विश्व कल्याण की राह खुलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दो दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर के आदर्श नगर स्थित एक डार्क स्टोर का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच में कोल्ड स्टोरेज का तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया, जबकि कई खाद्य पदार्थों को 5 डिग्री से कम तापमान में रखना जरूरी है। इसके चलते करीब 800 पैकेट डेयरी उत्पाद नष्ट करवाए गए। टीम को क्षतिग्रस्त और अवधि पार खाद्य सामग्री भी मिली, जिसे मौके पर नष्ट करवाया गया। निरीक्षण में स्वच्छता संबंधी कमियां भी सामने आई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध, घी, कार्बोनेटेड वाटर के नमूने जांच के लिए लिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी 13 सितंबर से एसएसओ पोर्टल पर अपना आवंटित परीक्षा जिला देख सकेंगे। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। कल से 16 सितंबर तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 13 और 14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बापी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहां पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ, एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ, और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को

अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश

जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आँखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है ये भी मुझे बताएं।

0: लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है। तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो। तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढ़ूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियाँ मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने। और मैं चाहूँगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाए अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूज़िक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन ज़रूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा होती है, इसके ज़रिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफ़ी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहाँ पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

ये सुदास की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी माता वैष्णो देवी गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती। इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की जरूरत ना पड़े लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित जरूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई अभी रिसेंटली जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो ज़रूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट VBS टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत ही, रिश्तेदार रखना होता ज़रूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस ज़रूर हो जाती है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफ़र, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है, कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा दो से तीन श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतज़ार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।

0: भूषण जी ने कहे ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजीरे से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत

0: ज्यादा जरूरी है, और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है?

0: in low-lying areas. Nidhi Shree for Akashvani News, Patna.
1: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In U.S. Open tennis, defending champion Aryna Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आर्यना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की

0: उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवू ओजुकवू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
3: For BRICS particularly, higher economic activity.
4: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
3: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
3: This year is a milestone.
4: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
5: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
3: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।

0: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण
2: चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
3: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
2: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच

0: ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में एक गीत आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

कहो ये कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी

0: अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए, और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं। और मुझे विविध भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं, और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर से।
0: अच्छा,
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?

0: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है
1: जी। बहुत सुंदर,
0: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके ये भारती से।
1: आरती जी,
0: ये
1: आपने
0: तो सौभाग्य है
1: जी
0: मुझे मिला जो आपका इसमें बात करने का।
1: आरती जी, आपने समय निकाल करके कॉल किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी। हाँ। बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ भरा पूरा परिवार है, हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियाँ भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए, तो सब कोई अच्छी सुनाता है। कोई अपने दुखी ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, मतलब
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लो मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं जो मेरी रूए से चैन दे प्यार दे जिंदगी
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: जी ज्योति जी, इंदौर से। बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी बच्चे हैं छोटे।
0: हाँ,
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी।
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी। स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी। तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ, बहुत कम मिलता है।
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी सुन लेते थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती हैं, है ना?
1: जी जी
0: जी। तो ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, इसके बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: नांदेड़ तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा।
0: हाँ हाँ।
1: और मम्मी जी है।
0: अच्छा, परिवार है मतलब भरा पूरा परिवार है?
1: हाँ परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है, 5 महीने का।
0: ओह, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना,
0: ABCD फिल्म का। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रीडर के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और दिवस भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए या पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुछ बोल रही हूँ मैम, निशागढ़ जिला अशोक नगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी दीदी, अंदाज़ पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमुन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में दीदी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब 350 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरी दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भारत पूरी परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किसका कॉल लगा है, अपना नाम बताइए।
1: कृष्णा लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं।
0: हाँ हाँ।
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: जाती हूँ दीदी, मेरी बहू भी है।
0: हाँ हाँ, तो वो भी जाती है?
1: हाँ, दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: मैम, मैं अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से।
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और पहले सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद, कभी का नंबर लगता रहे।
0: जी ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतज़ार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये रीत भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊँ मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं अपने इंडियन जो
0: जी।
1: और
0: जी जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए, शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए एक महिला को ये सारी चीज़ों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शॉपिंग होगी तो और कौन होगा।
0: जी हाँ,
1: और कोई तो पहन नहीं सकता।
0: बिल्कुल
1: सारी चीजें
0: जी, इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्न चित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी, आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे आ जा रे।
0: बिल्कुल चलिए, तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद
0: जी। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी। तो घर के काम काज में दिन भर

0: सारा समय निकल जाता होगा, है ना?
1: हाँ निकल जाता है ना, दिन भर ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है। जी बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा?
1: नहीं नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं, सीधे बड़े वाले बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सीधे 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर? परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे?
1: है ना, बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे,
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना?
1: हाँ
0: जी,
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननद भी साथ में रहती है।
1: हाँ।
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, भी निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 2867-0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वो अभी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार माँ को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर माँ इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था, चिट्ठी आई है। मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं ना कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। ये सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें देखने वाले की नज़र अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतज़ार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। FM के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूँ। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है, आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खतों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे।

और मेरी आवाज़ तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था।

एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शोक खत्म हो गया। अब कब आएंगे ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज़ में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वो अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी कहानी आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों, शाम के बज चुके हैं 5 और ठीक इसी समय बहनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है रोज एक सखी के द्वारा। तो आज मैं आपकी रेडियो सखी अनामिका एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत लेकर। अभिवादन के साथ मैं आगाज करती हूँ सखियों के प्रोग्राम की। आज हम बात करेंगे बहनों एक ऐसे विषय की जो आधुनिक नारी की बदलती सोच, उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी नई पहचान से जुड़ा है। विषय है महिला इन्फ्लुएंसर और डिजिटल उद्यमिता की ओर बढ़ते कदम। सखियों, एक समय था जब महिलाओं की प्रतिभाएं घर की चार दीवारी तक सीमित रह जाती थी। हुनर था, सपने थे, कुछ कर गुजरने की चाहत थी, लेकिन अवसर सीमित थे। आज समय बदल चुका है। हाथों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा ने संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी है। आज महिलाएं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पहचान बना रही हैं। कोई अपने फैशन और सौंदर्य संबंधी ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रही हैं, तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही हैं। कोई अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से पहचान बना रही हैं, तो कोई कला, हस्तशिल्प और संगीत को डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रही हैं। यही नहीं, आज की महिला केवल कंटेंट क्रिएटर नहीं है बल्कि एक सफल डिजिटल बिजनेस वूमेन भी बन रही है। बातों का सिलसिला आपसे यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, अभी हम बात कर रहे थे महिला इन्फ्लुएंसर और डिजिटल उद्यमिता की ओर बढ़ते कदम। चलिए इसी जानकारी को हम और आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, घर की रसोई से शुरू हुआ एक छोटा सा होम बेकरी का काम सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। घर पर तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पाद ऑनलाइन बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग या किसी भी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आय का साधन बनाया जा सकता है। सखियों, एक महिला इन्फ्लुएंसर की भूमिका केवल किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने विचारों और अनुभवों से समाज को सकारात्मक दिशा भी दे रही है। जब एक महिला शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती है और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, या दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है, तो उसका प्रभाव केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में बदलाव की एक नई शुरुआत बन सकता है। लेकिन बहनों, कहा जाता है ना, हर नई राह अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। डिजिटल दुनिया में महिलाओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना भी बेहद ज़रूरी है। लोकप्रियता की दौड़ में अपनी पहचान और मूल्यों को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं मोबाइल और इंटरनेट को केवल मनोरंजन का साधन ना समझें, बल्कि इसे अपने ज्ञान, कौशल और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बनाएं। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कला किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत बन जाए, या फिर किसी अन्य महिला को अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने की प्रेरणा दे दे। आखिर में याद रखिए सखियो, सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि उन्हें हौसलों और मेहनत से सच बनाया जाता है। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

0: मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: सखियो, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने एक अच्छी खासी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर अहमदाबाद में कैफे आरंभ शुरू किया, जो मिलेट्स और पर्यावरण अनुकूल तरीकों पर आधारित जीरो वेस्ट कैफे है, जिसे 2021 में अहमदाबाद गुजरात की यंग बिजनेस वूमेन निष्ठा चौहान ने शुरू किया। चलिए इस कैफे के आज मैं आपको सैर कराती हूँ। और इस कैफे का उद्देश्य खाना बेचना नहीं बल्कि स्वस्थ खान पान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस मिलेट्स कैफे में आपको मिलेंगे रागी, बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों से बने स्वादिष्ट और लजीज सेहत से भरपूर शानदार व्यंजन। अगर आप भी कभी अहमदाबाद गुजरात की सैर पर निकले तो इस कैफे के मिलेट मोमोज, रागी डोसा, मिलेट वड़ा पाव और भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन जरूर चखें, जो स्वास्थ्यवर्धक और पारंपरिक तरीकों से तैयार किए जाते हैं। बहनों, इस कैफे की दूसरी विशेष बात यह है कि यहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पर काम किया जाता है, यानी कि कम से कम कचरा फैलाने पर रोकथाम। इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्टील स्ट्रॉ और रीयूजेबल कटलरी का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली प्लेट कटोरियों का उपयोग किया जाता है, गीले कचरे को कंपोस्ट करके खाद बनाई जाती है, स्थानीय किसानों और विक्रेताओं से सामग्री खरीदकर कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश की जाती है। इस कैफे में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एयर कंडीशनिंग की निर्भरता ना के बराबर रखी गई है और अन्य प्राकृतिक और कम ऊर्जा वाले कूलिंग तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। निष्ठा चौहान के अनुसार उन्होंने इस कैफे की शुरुआत 70-80 हज़ार की छोटी सी पूंजी से की थी, लेकिन आज उनका कैफे 12 लाख मासिक आय प्राप्त कर रहा है। हम इस प्रेरणादायक और सच्चे वाक्य से सीख सकते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाना भी होना चाहिए। निष्ठा चौहान की यात्रा विशेष रूप से महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा है कि एक अच्छा विचार, सही उद्देश्य और दृढ़ संकल्प छोटे स्तर से शुरू होकर बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब सुनते हैं एक और गीत और फिर चलते हैं हम अपने कार्यक्रम के अंतिम विषय पर।

ना कहना भी मेरा अधिकार, मेरी बात का रखो सत्कार। जो अच्छा लगे मैं हाँ कहूँ, जो अच्छा ना लगे तो ना कहूँ। मेरी इच्छा, मेरी पहचान, मेरी आवाज़ का रखो मान। ना मेरी कमजोरी है, ना मेरी मजबूरी है, हर नारी का यही सम्मान, उसकी ना का रखो मान। बहनों, हम सभी को बचपन से ही दूसरों की मदद करना, रिश्तों को निभाना और सबका सम्मान करना सिखाया जाता है। लेकिन अक्सर इसी दौरान हम एक बहुत ज़रूरी बात सीखना भूल जाते हैं, और वो है समय आने पर ना कहना सीखना। कई बार हमारा मन किसी काम के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी हम दूसरों का मन रखने के लिए या इस डर से कि कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, हम ना नहीं कह पाते। बहुत बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश में हम अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। सखियो, आज मैं आपको एक लेकिन याद रखिए सखियो, हर बात पर हाँ कहना ज़रूरी नहीं, और ये कोई अच्छाई का प्रमाण भी नहीं है। ना कहना बदतमीज़ी नहीं है और ना ही स्वार्थ, बल्कि ये अपनी सीमाओं, अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान का सम्मान करना है। विशेषकर हम सब महिलाओं से अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि वे सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और हर परिस्थिति में समझौता करें, लेकिन दूसरों का ख्याल रखते रखते स्वयं को भूल जाना भी सही नहीं है। चलिए, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो सखियो, हम बात कर रहे थे कि हमें ना कहना ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इस समय यह काम नहीं कर पाऊंगी, या फिर आज मेरे पास अपने भी बहुत काम हैं, मुझे अपने लिए समय चाहिए। ना कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त बचाना है। इसीलिए अच्छे इंसान बनिए, अपने लिए भी समय निकालिए, लोगों की सहायता कीजिए और रिश्तों को दिल से निभाइए। लेकिन शर्त ये हो कि आप अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान ना खोए। इसी प्यारे से संदेश के साथ कभी ना कहना भी सीखे। मैं अनामिका अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद सखियों।

अभी हमारी बहनें महिला जगत कार्यक्रम सुन रही थी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

कभी आपने महसूस किया है कि कोई चीज़ जो कभी आपके लिए बहुत खास थी, वही धीरे धीरे इतना बोझ बन गई कि उसे संभालना किसी मुसीबत से कम नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के युवाणी कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि कभी कभी जिंदगी में कोई चीज़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो कल तक हमारी खुशी थी, वही आज हमारे लिए परेशानी बन जाती है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वही चीज़ जरूरत से ज्यादा हमारे जीवन पर हावी होने लगती है तो उसका हमें वजन महसूस होने लगता है। और शायद इसलिए कहा गया है कि हर अच्छी चीज की भी एक सीमा होती है, क्योंकि सीमा के पार वही अच्छाई बोझ बन सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा हमें मिले उतना ही अच्छा होगा, उससे हमें खुशी मिलेगी। पर ज्यादा प्यार मिले, ज्यादा ध्यान मिले, ज्यादा सफलता मिले या ज्यादा लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हों, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान को सिर्फ चीजों की कमी ही नहीं थकाती, कई बार चीजों की अधिकता भी थका देती है। हर चीज की उस खूबसूरती उसके होने में नहीं बल्कि उसके सही संतुलन में होती है। श्रोताओं, जिस चीज की हमारे पास कमी होती है हम उसके लिए परेशान होते हैं, और जब वही चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा हमको मिल जाती है, हमारे पास उपलब्ध होती है, तो हम उससे भी परेशान होने लगते हैं। हमें प्यार चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हर पल हमें जवाब देना पड़े। हमें अपनापन चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम अपनी आजादी ही खो दें। हमें सफलता चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उसके पीछे भागते भागते अपनी खुशियां ही हम भूल जाएं। और रिश्तों में भी यही होता है, कभी कभी हम किसी रिश्ते को बचाने के लिए इतना कुछ सहते रहते हैं कि एक वक्त के बाद रिश्ता खुशी नहीं एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगता है। हम हर बात समझाते हैं, हर बात समझने की कोशिश करते हैं, हर बार खुद को बदलते हैं, और फिर एक दिन मन चुपचाप कहता है बस अब बहुत हो गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है, न ज्यादा पकड़ना न पूरी तरह से छोड़ देना। कभी कभी खुद से थोड़ा पीछे हटकर हमें देखना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं क्या वो सच में उतनी बड़ी है। कुछ पाना, कुछ छोड़ना, कुछ निभाना, कुछ भूलना, और सबसे जरूरी है हर हाल में खुद को संभाल कर रखना। Thank you.

दोस्तों, आजकल रिश्तों में एक नया ट्रेंड चल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साइलेंट ट्रीटमेंट होता क्या है और ये रिश्ते पर क्या असर डालता है। दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह से एक ऐसा व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति किसी समस्या या मुद्दे को सुलझाने के बजाय अपने साथी के साथ बात करना बंद कर देता है। ये एक तरह से इमोशनल दूरी बनाना है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को जाहिर करने के बजाय चुप्पी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। और इसके पीछे दोस्तों कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गुस्सा और निराशा। जब कोई व्यक्ति किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है या निराश होता है तो वे बात करने के बजाय आपस में वो चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और कई बार कभी लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कभी अपने पार्टनर को सजा देने के लिए भी साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और कई जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए भी ऐसा करते हैं। दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट का किसी भी रिश्ते पर गहरा असर पड़ सकता है। ये रिश्ते में दरार भी पैदा कर सकता है और विश्वास को भी कमजोर कर सकता है। इससे सामने वाले को लगता है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और इससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनल रूप से बहुत पीड़ा सहन करते हैं एक तरह से। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट लगातार जारी रहता है तो ये रिश्तों को भी दोस्तों तोड़ सकता है। ये किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। यदि एक व्यक्ति को लगता है कि इससे हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं या मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वे गलत है। एक अनहेल्दी बिहेवियर है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। यदि एक व्यक्ति को लगता है कि ये इससे हम किसी समस्या का हल कर रहे हैं और तो ये किसी भी तरह से समस्या का हल नहीं निकालता है, उल्टा ये एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाता है। रिश्तों में आपस में असुरक्षा का माहौल पैदा करता है, अविश्वास पैदा करता है। इसके बजाय हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि हम खुले तौर पर बातचीत करें। यदि आपस में लड़ाई हो गई है या किसी बात पर अनबन हो गई है तो हम चुप रहने के बजाय खुलकर बात करें, उन्हें अपनी भावनाएं समझाएं कि हम क्या सोचते हैं या हमें कैसा फील हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना आना चाहिए। ये एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी है। यदि आप दोनों आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, यदि रिश्तों में अनबन फिर भी जारी है तो दोस्तों हम किसी की सलाह भी ले सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी है रिश्तों पर ध्यान देना। यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी।

कभी जयपुर में बैठकर टीवी पर किसी और की कामयाबी देखना और फिर उसी कामयाबी को अपना सपना बना लेना। राजस्थान की मोना अग्रवाल की कहानी कुछ ऐसी ही है। टोक्यो पैरालंपिक में जब राजस्थान की व्हीलचेयर शूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता तब मोना दूर जयपुर में बैठी उनकी उपलब्धि देख रही थी। उस दिन शायद उन्हें पता भी नहीं था कि ये पल उनकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। अवनी की सफलता ने मोना को शूटिंग में आने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले मोना सिटिंग वॉलीबॉल और शॉट पुट में हिस्सा लेती थी लेकिन राइफल थामने के बाद उनका सफर लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया। 10 सितंबर 2026 को दक्षिण कोरिया के चोंगवन में पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में मोना ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में 250 अंक के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये पदक उन्होंने राइफल स्टैंडिंग SH-1 स्पर्धा में जीता है। दोस्तों SH-1 वर्ग में ऐसे निशानेबाज शामिल होते हैं जिनके निचले अंगों में दिव्यांगता होती है लेकिन वे किसी बिना किसी स्टैंड के अपनी बंदूक का वजन संभाल सकते हैं। दोस्तों उनका जन्म 8 नवंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था और महज 9 महीने की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया जिसका असर उनके दोनों पैरों पर पड़ा और विवाह के बाद वे जयपुर में आ बसी। दिसंबर 2021 में मोना ने निशानेबाजी की शुरुआत की और जुलाई 2023 में क्रोएशिया में हुए वर्ल्ड कप से अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की उन्होंने शुरुआत और ये सफर उनका अब निरंतर जारी।

चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बताएंगे आपको INS निपुण के बारे में। दोस्तों, इंडियन नेवी ने मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीक से तैयार INS निपुण गहरे समुद्र के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इससे पहले INS निस्तार पिछले साल जुलाई में बेड़े में शामिल किए जाने के बाद से पूर्वी नौसेना कमान के तहत अपनी सेवाएं दे रहा है। विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित और 75% स्वदेशी सामग्री से बना 8,500 टन का ये पोत 300 मीटर की गहराई तक संतृप्त गोताखोरी और संकटग्रस्त पनडुब्बियों से चालकों को सुरक्षित निकालने का जैसे कठिन कामों को ये अंजाम देने में भी सक्षम है। ये जहाज समुद्र में 300 मीटर तक की गहराई में सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड स्टेज डाइविंग अभियानों को भी अंजाम दे सकता है। ये समुद्र की तेज लहरों और खराब मौसम में भी स्थिर रह सकता है, जिसके चलते ये समुद्र के भीतर फंसी पनडुब्बी और नौसेना को आसानी से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा यदि कोई शिप या मशीन समुद्र के भीतर खराब हो जाती है तो वहीं उसे रिपेयर भी कर सकता है। गहरे समुद्र में जटिल अभियानों के लिए इसमें 15 टन की सबसी क्रेन, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम और 1000 मीटर की गहराई तक काम करने में सक्षम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROV तैनात किए गए हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इस जहाज में 8 बिस्तरों वाला अस्पताल, एक गहन चिकित्सा इकाई, एक ऑपरेशन थिएटर, हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं और ये इसे गहरे समुद्र में गोताखोरी से संबंधित चिकित्सा समस्याओं से निपटने की क्षमता भी प्रदान करती है।

तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास खुशियां बिखेरते रहिए। नमस्कार।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा।
4: अभी युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

0: और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय

लीजिए, पहले सुनिए हमारी आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्राम भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुन पाएंगे चर्चा बैंगन की उन्नत उत्पादन तकनीक, साथ ही किसान भाइयों को एक

आज के कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुन पाएंगे चर्चा बैंगन की उन्नत उत्पादन तकनीक, साथ ही किसान भाइयों को एक भेंट वार्ता भी सुनवाई जाएगी बागवानी से पाएं अधिक आय। संत का नंगला ग्राम पुनखर पंचायत समिति मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान भरतलाल मीणा से भेंट वार्ता। आपको जानकारी दिलवाई जाएगी बैंगन के प्रमुख रोग व प्रबंधन, साथ ही साथ किसान भाइयों को बाजार व मौसम भाव भी बताया जाएगा। शाम 7:30 बजे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे श्रीलंका बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार संध्या आप सुन पाएंगे रात्रि 8:45 पर। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 बजे।

ओलिविया, अब सुनिए कल की सब हमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। कल सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लेके जाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार सवेरे 6:05 पर मुंबई केंद्र से ले किया जाएगा। रामचरित मानस कान आप सुन पाएंगे 6:35 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम होगा सवेरे 6:45 पर। सवेरे 7 बजे नमस्कार अलवर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे सवेरे 7:30 पर। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 8:15 पर।

सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें फिल्मों की। फिल्मी गीतों में अंग्रेजी का तड़का, इस विषय पर स्वर और आलेख रचना जैन का रहेगा। प्रस्तुत करता होंगे शिव कुमार शर्मा। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे सवेरे 9 बजे। 9:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से लेके जाएंगे।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

और लीजिए अब काश फिल्म का ये गीत सुनिए। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की। गीत को लिखा है फारूक कैसर ने, संगीत राजेश रोशन का है।

0: इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में, दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत, और राज्य के कुछ हिस्सों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत, कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ। 147 निकायों में शाम 5 बजे तक लगभग 68% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए जारी रहा। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ। शहरों की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। दोपहर 3 बजे तक बाड़मेर के धोरीमन्ना में 85% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। वहीं उदयपुर के मावली में 80% वोट डाले गए। बाड़मेर के चौहटन में 78% मतदान दर्ज हुआ। प्रमुख नगर निगमों में दोपहर 3 बजे सबसे कम अजमेर में करीब 48% वोट डाले गए। मातृशक्ति और युवा शक्ति, नव मतदाता तथा बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग में मतदान को लेकर जोश देखा गया। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी के बाद मतदाताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: पिंगाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडी होकर के नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
2: मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
3: मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाए और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी के प्रकार की व्यवस्था की जाए।
0: निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की जगतपुरा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को जनता के हित में बताया।
4: राजस्थान को विकसित बनाने का, निकाय को विकसित बनाने का हमारा दायित्व होता है। हमारा वो संकल्प वन स्टेट वन इलेक्शन वो हमने पूरा किया है और राजस्थान देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान निश्चित रूप से जनता सुखद महसूस कर रही है कि हमारे 2 महीने के अंदर हमारे चुनाव हो जाएंगे और फिर आराम से राजस्थान की जनता के विकास के कार्य होंगे।
0: दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही 18,266 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। 162 निकायों में हुए पहले चरण में मतदान प्रतिशत 76.41 रहा। कुल 309 निकायों में हुए इन चुनाव के लिए 38,929 उम्मीदवार मैदान में हैं। 76 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में आयोजित होने वाले 2 दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर होंगी। भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज दोपहर में नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत करेंगे। ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार

0: प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुसार नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए समर्थन दोहराया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। इनका सबसे ज्यादा असर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, किंतु भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अड़िग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके तहत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकेंड से कम करना है। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
1: देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके रिकमेंडेशन सजेशंस हमको दीजिए, हम उसमें पूरी तरह आपको सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य का हाईवे केवल एक फिजिकल रोड नहीं होगा, वो डिजिटल हाईवे है। और इसलिए आपको ये अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि हम क्या क्या करने से लोगों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री बना सकते हैं।
0: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला कल से शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस मेले के लिए श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि मेले में साफ सफाई पर विशेष जोर रहेगा। मेले को पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने सभी मेलार्थियों से स्वच्छता को लेकर सहयोग करने की अपील की है।
2: श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जहाँ भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, टॉयलेट की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की, वो सारी सुविधाएं जो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इस बार हमने आग्रह किया प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज नहीं करें। इसमें जितने भी भंडारे लगे हैं उसमें जो भंडारे स्वच्छता के सारे नॉर्म्स पालन करेंगे तो मिलजुल कर इस जो मेले को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी है। हमने श्रद्धालुओं से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल का बहाव हो रहा हो उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से या जंगल से पानी बहुत तेजी से आता है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं हो तो हमने सभी नाले या झरने उनके आसपास पर्याप्त जागरूकता और हमारे वॉलंटियर्स भी लगाए हैं।
0: राज्य में मानसूनी गतिविधियों का दौर एक बार फिर आज से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके असर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। बारिश का ये दौर 15 सितम्बर तक जारी रहने के आसार हैं। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट किया गया है। इस बीच आज दोपहर बाद भरतपुर में घनघोर घटाएं छा गईं और 1.5 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। 12 में भी दोपहर बाद कुछ देर जोरदार पानी बरसा। राजधानी जयपुर में भी अब से कुछ देर पहले बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि मौसम के इस बदलाव से पहले अधिकतर स्थानों पर उमस भरी गर्मी बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 से ज्यादा स्थानों

0: पर दिन का तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा जा रहा है। पिलानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, वहीं श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू सहित अन्य स्थानों पर दिन का तापमान 37 डिग्री के पास पहुंचने से उमस और गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का पूर्वानुमान बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में, दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत और राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत, कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव की खबरों के साथ। जिले में 11 स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में कराए गए। पहले चरण में चूरू, सुजानगढ़, रतननगर, राजगढ़ और छापर में मतदान हुआ। इन पांच निकायों के 205 वार्डों के लिए 276 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान में 186,004 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजगढ़ नगर पालिका में सबसे अधिक 77.98% मतदान हुआ, जबकि सुजानगढ़ में 68.91% यानी सबसे कम मतदान हुआ। चूरू में 72.81, रतननगर में 75.99 और छापर में 75.04% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के वोट 9 सितंबर को डाले गए। दूसरे चरण में आज तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, साहवा और बीदासर सहित अन्य निकायों में मतदान हुआ। जिले के कुल 450 वार्डों के लिए 1,545 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव कार्यालय बनाए, जहां समर्थकों की आवाजाही रही। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं की। आचार संहिता लागू होने के बाद उसके पालन पर भी ध्यान दिया गया। अब चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी है। जिले की 11 निकायों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि चूरू की मतगणना केंद्रीय विद्यालय में 14 टेबलों पर 8 राउंड में होगी। सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या कॉलेज, छापर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार शहर में SBD कॉलेज और तारानगर में जालपा देवी कॉलेज में मतगणना होगी। सहावा में मोहिनी देवी चाचाण कॉलेज, रतनगढ़ में केशरी देवी लोहिया कन्या कॉलेज, राजल देसर में राजकीय कॉलेज और बीदासर में ज्ञान ज्योति उमा शिक्षण संस्थान में मतगणना की व्यवस्था की गई है। इस बार मानसून की बारिश औसत से कुछ कम रही। बारिश की कमी के कारण खेतों में खड़ी फसल के पत्ते पीले पड़ने लगे थे और किसान चिंतित नजर आए। बीते सप्ताह जिले में जोरदार बारिश हुई, इसके बाद खेतों में फसल फिर से हरी होने लगी है। बारिश से फसलों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लोक देवता गोगा जी की जन्म जयंती पर चूरू की मुख्य गोगा मेड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। परंपरा के अनुसार विभिन्न गोगा मेड़ियों से निशान यात्राएं ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य मेड़ी पहुंची। करीब 35 निशानों के साथ श्रद्धालुओं ने मुख्य मेड़ी में धूक लगाई। श्रद्धालु नाचते गाते और गोगा जी के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों ने विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लगाई, झूले भी लगाए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल सेवा की गई। इसके अलावा मेला स्थल पर एम्बुलेंस तैनात रही और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। चूरू में ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। संत निवृत्त नाथ जी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस तरह की ई लाइब्रेरी उपयोगी है। लाइब्रेरी में पढ़ाई

0: से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चूरू के लोहिया कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ की ओर से रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। सुजानगढ़ नगर पालिका में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू की गई है। पालिका प्रशासन ने शहर से करीब 35,000 घरों का सर्वे किया है। इसके बाद 30 गाड़ियों के माध्यम से घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था से घरों के आसपास जमा कचरे से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। घड़ाऊ गांव निवासी भारतीय सेना के 91 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक राजेश चौहान बीते दिनों वीर गति को प्राप्त हुए। उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके सम्मान में गांव में तिरंगा रैली निकाली गई। चूरू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर में आज शांति सागे वोट पड़िया। वोटारी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। भारत री सदारत और मेजबानी माए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काल नई दिल्ली माए शुरू भेला। दुनिया रा कई खास नेता दिल्ली पुग्या। देश माए आज फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी शुरू, वन टैग सुबितो शुरू भयो। और प्रदेश रा कुछ हलका माए चौमासा री बिरखा ओजू शुरू भी। काल 29 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माए नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रा चुनाव माए वोट देवन रो काम अब थोड़ी देर पहली पूरो भे गयो। इन तेत 147 निकाया माए सिंजा 5 बजा ताई करीब 68% वोट पड़िया। सवारे 7 बजा सरूफियो वोट देवन रो सिलसिलो सिंजा 6 बजा ताई मतदान केंद्र माए दाखिल भेजावन वाला सारू चालतो रहो। ई दौर माए 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकावां रा चुनाव सारू वोट पड़िया। शहरां री सरकार रा चुनाव सारू वोट देवन वाला माए खास उमाव नीचर आयो। दोपहर 5:30 बजा ताई बाड़मेर जिला रा धोरी मन्ना माए 85% बत्ता वोट पड़ गया है। दोपहर 5:30 बजे ताई उदयपुर जिला रा मावली माए 80%, जबकि बाड़मेर जिला रा चौहटन माए 78% वोट पड़ गया है। खास नगर निगम माए शामिल अजमेर माए दोपहर 3 बजे ताई सबों कम करीब 48% वोट पड़िया। महिलावां वोट देवन वाला नुआ लोगां और बुजुर्गां समेत हर उम्र रा लोगां माए वोट देवन रो उमाव निचर आयो।
2: पिंगाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडी होकर के नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
3: मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
4: मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाए और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी के प्रकार की व्यवस्था की जाए।
1: निकाय चुनाव रा दूजा और आखिरी दौर माए आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए जगतपुरा हलका रा एक मतदान केंद्र माए वोट तीनों। ई पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वे एक राज्य एक चुनाव री सोच ने जनता रो भलो करण वाली बताई। दूजा दौर रो मतदान पूरो फेवन सा गई। 18,266 उम्मीदवार रो सियासी भाग ईवीएम माए बंद वे गयो। 9 सितंबर ने भया पहला दौर रातेत 162 स्थानीय निकायां माए 76.41% वोट पड़िया हा। कुल 309 निकायां माए चुनाव सारू 38,929 उम्मीदवार चुनाव मैदान माए है। 76 वार्डा माए उम्मीदवार बिना चुनाव सगणा री एक राय चुनी चिया।

0: वोटानी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए भारत री सदारतर मेजबानी माए काल नई दिल्ली माए शुरू फेरिया 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माए न्यारा न्यारा मुद्दा माथे सकारात्मक और सार्थक चर्चा फेवन री उम्मीद जताई है। शिखर सम्मेलन माए ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 खास उभरती और विकासशील माली व्यवस्थाओं रा नेता एक साग विचार करेला। नई दिल्ली रा भारत मंडपम माय फेवन वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रो मुद्दो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण राखीचियो है। शिखर सम्मेलन में रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका रा राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र रा राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी रा युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दुनिया रा कई नेता शामिल फैला। इथियोपिया रा प्रधानमंत्री आबी अहमद अली सम्मेलन में भाग लेवेला। इबीच प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पाछे नई दिल्ली में रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री मोदी रो आज सिंजा ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सागे बातचीत करन रो कार्यक्रम है। इबीच ब्रिक्स देशाना वित्त मंत्रियां और केंद्रीय बैंक रा गवर्नरां री मुंबई माय भी मीटिंग माय टैरिफ और गैर टैरिफ अड़चना समेत एक तरफा कारोबार और माली उपाय लागू करण माथे गंभीर चिंता जताई ची। सदस्य देश WTO ने ध्यान रखता थका स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था री हिमायत दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि आतंकवाद रो बदलता रूप माय खतरो लगातार बधरियो है, पर भारत रो इनरा सगड़ा रूपां रे खिलाफ लड़ाई रो संकल्प अडिग है। अमेरिका माय 11 सितंबर 2001 ने भया आतंकवादी हमला री 25वीं बरसी रे मौके सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि आतंकवाद आखी दुनिया माय अनगिनत लोगां नी जान लेनी है। वह कहो कि सरहद पार हूं आतंकवाद री जद माय आयो भारत दशकाओं इनरे खिलाफ लड़ाई माय आगे रहो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मुंबई में फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी सारू वन टैग सुविधा री शुरुआत कीनी। इन तेत गाड़ी रो मालिक मौजूदा फास्ट टैग ने राजमार्ग यात्रा ऐप रे जरिए नुआ बैंक खाताओं जोड़ सके है। ई मौके गडकरी कहो के टोल प्लाजा माथे इंतजार 10 सेकंड नु कम करनो पड़े, सरकार चालू माली साल रा आखिर ताई एड़ी व्यवस्था माथे खास ध्यान दे रही है। वे बतायो कि देश भर माय हाल ताई 13 करोड़ बत्ता फास्ट टैग जारी कर दिया चिया है।
1: देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्ट टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके रिकमेंडेशन सजेशन हमको दीजिए, हम उसमें पूरी तरह आपको सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य का हाईवे केवल एक फिजिकल रोड नहीं होगा, वो डिजिटल हाईवे है। और इसलिए आपको ये अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि हम क्या क्या करने से लोगों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री बना सकते हैं।
0: सवाई माधोपुर जिला माए रणथंभौर रो नामी त्रिनेत्र गणेश मेलो काल शुरू फैला। 3 दिन रा ई मेला माए जात्रुआ री मोटी तादाद माए आमद रफ्त रा आसार न ध्यान रखता थका पुलिस प्रशासन री ओर पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। जिला कलेक्टर कानाराम बतायो के मेला माए साफ सफाई माथे खास ध्यान दियो जावेला और सिंगल यूज प्लास

0: जेकर डिस्पोजेबल सामग्री काम नहीं ली जा सकेला।
1: अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जहाँ भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, टॉयलेट की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की, वो सारी सुविधाएं जो जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इस बार हमने एक आग्रह किया प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज नहीं करें। इसमें जितने भी भंडारे लगे हैं उसमें जो भंडारे स्वच्छता के कारण नॉर्म्स पालन करेंगे तो मिलजुल कर इस जो मेले को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी है। हमने अस्पतालों से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल का बहाव हो रहा हो उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से या जंगल से पानी बहुत तेजी से आता है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं हो तो हमने सभी नाले या जगह है उनके आसपास पर्याप्त जाप्ता और हमारे वॉलंटियर्स भी लगाए हैं।
0: अरे मौसम राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी उजू स्वरूप बन रहा सार है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश रा उगनी और लंकाउ हल्का माय कठे कठे बिरखा फै सके है। बारिश रो ओ सिलसिलो 15 सितंबर तक चालतो रेवन री संभावना है। काल 29 जिला माय बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन बीच आज दोपहर पाछे भरतपुर माय 1.5 घंटा तक झमाझम में बरसियो। बारा माय दोपहर पाछे थोड़ी देर तक जोरदार बिरखा फी। राजधानी जयपुर माए कठे कठे छांटो छिड़को फियो। लारला 3-4 दिन बिरखा नहीं वेवणु पारो चढ़वा लाग्यो हो। पिलानी माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। 10-32 ठोणा अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस बीच चाल रियो है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू समेत कई ठोणा पारो 37 डिग्री सेल्सियस कने पूग गयो। मौसम विभाग आवता 2 सप्ताह माए अधिकतम तापमान सामान्य ऊंचो रहवण रा आसार जताया है। बालोतरा जिला में गुढ़ामलानी रतनपुरा गेला माथा एक कार और गाड़ी री आमी सामी रे टक्कर रे कारण कार में सवार एक ही परिवार री 2 महिलाओं री मौके ही मौत वेगी, जबकि 5 जना जख्मी फेंक्या। जोधपुर जिला में शेरगढ़ कने भूंगरा मेगा हाईवे माथे बीती रात पैदल रामदेवरा जा रहा यात्रुआ रे एक बेकाबू कार री फेंट में आ जावण 3 यात्रुआ री मौत वेकी। शेरगढ़ रा थाना अधिकारी बतायो के ए लोग नाथासर गांव रा रहवासी हा। राजधानी जयपुर रा करधनी हल्का माय एक मकान एक महिला और 3 टाबनिया री लाशा बरामद करी जी। जयपुर पश्चिम रा पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण बतायो का शुरुआती जांच माय परिवार रा मुखिया कानियों आ वारदात करण री जानकारी मिली है। पुलिस मामला री जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 मत है 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माई खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रदेश माई नगरी निकाय चुनाव रा दूजा दौर माई आज शांति सागर वोट पड़िया। वोटां री गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। भारत री सदारत और मेजबानी माए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काल नई दिल्ली माए शुरू भेला। देश माए आज फास्टैग पोर्टेबिलिटी सारू वन टैग सुबितो शुरू थियो। और प्रदेश रा कुछ हल्का माए चौमासारी बिरखा ओजू शुरू थी। काल 29 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुन रहे सभी ग्रामीण बहन भाइयों को रमेश भाई की ओर से घनी घनी राम राम। देखो आज जो मैं ग्राम भारती कार्यक्रम में अपने भाइयों के लिए जो प्रोग्राम में लेकर आए हैं, सबसे पहले तो बात करें चर्चा की, तो चर्चा में आज बात करेंगे बैंगन की उन्नत उत्पादन तकनीकी। साथ में भाइयों सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, बागवानी से पाए अधिक लाभ। संत का नंगला पूनकर पंचायत समिति मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान भरतलाल मीणा से ये भेंट वार्ता है। साथ में जानकारी देंगे बैंगन के प्रमुख रोग प्रबंधन और साथ में भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन। तो वे देखो जो आज चर्चा अपन करें बैंगन की उन्नत उत्पादन तकनीकी विषय पर। तो बैंगन देखो एक आमतौर पर सभी जगह बोई जाने वाली फसल है और इसके उत्पादन भी वर्ष भर चलता रहता है। सर्दी गर्मी बरसात तीन ऋतु में ये बोया जाता है, तो इसकी उत्पादन बहुत अच्छा होता है और बहुत ही किसान भाइयों के लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे में अगर इसकी बात करें जलवायु की, तो जलवायु में इसके जो है इसमें हल्के गर्म मौसम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नर्सरी में बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कम व अधिक तापमान होने पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होने पर फूल झड़ना इसके शुरू हो जाते हैं। और इसके उत्पादन के लिए अगर अपन बात करें भूमि की, तो भूमि में सबसे पहले दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। अगर दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छा उत्पादन उससे मिलेगा। साथ में उसमें जल निकास की सुविधा हो और सिंचाई का उचित प्रबंध हो और भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। ऐसी भूमि में अपन बैंगन की फसल ले सकते हैं उन्नत तकनीकी से। साथ में भूमि की तैयारी की अगर अपन बात करें, तो इसमें जो अपनी पहले जो अपन ने कोई भी फसल ली है उसके जुताई करने के लिए पहले तो अपन मिट्टी पलटने वाला हल से उसकी गहरी जुताई करते हैं, साथ में दो तीन जुताई कल्टीवेटर से लगा के। और इसमें जो भूमि के जो के कीटनाशक के लिए भूमि उपचार अपन करके और अंत में जो पाटा लगा के और भूमि को समतल कर देते हैं और बाद में उसमें क्यारी या मैट जो भी निकालते हैं वो निकाल देते हैं, जिसमें मुख्य फसल की बैंगन की बुआई अपन कर देते हैं। तो बैंगन की फसल की जब अपन बात करें, तो बैंगन की में सबसे पहले तो उसकी पौध तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के बाद ही उसकी मुख्य खेत में पौधरोपण की जाती है। तो नर्सरी अगर अपन तैयार करें, उससे पहले बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो बैंगन की जो उन्नतशील किस्में जो अधिक उत्पादन देती हैं और अपने यहाँ ज़्यादा प्रचलन में हैं, उसमें दो तरह का बैंगन आता है, लंबा बैंगन और गोल बैंगन। तो लंबे बैंगन की अगर किस्मों की बात की जाए, तो DBL2, DBL 175, PVL 232, पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा क्रांति, पूसा श्यामल, पूसा हाइब्रिड 5, अर्का आनंद, पंत सम्राट, ये कुछ किस्म लंबे बैंगन की। साथ में गोल बैंगन की अगर किस्मों की बात की जाए, तो पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, अर्का नवनीत, पूसा अंकुर, पंत ऋतुराज, काशी संदेश, काशी प्रकाश, पंत ऋतुराज आजाद, V4, PVH SR 31 और पूसा वैभव। ये कुछ ऐसी उन्नतशील किस्में हैं जिनकी बुआई करके किसान भाई अधिक पैदावार ले सकते हैं उन्नत तकनीकी से। साथ में बीज की मात्रा की अगर अपन बात करें, तो इसके पौधरोपण के लिए करीब उन्नतशील किस्मों की 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यक होता है। और कुछ हाइब्रिड किस्मों का अगर चयन करें, तो उसमें 250 से 300 ग्राम बीज ही पर्याप्त रहता है। तो सबसे पहले अगर अपन नर्सरी तैयार करने की बैंगन की बात करें, तो बैंगन की बीज की पौधशाला बुआई करते हैं, जो नर्सरी वाला स्थान है उसको अच्छी तरह से घास फूस से मुक्त करें, कंकड़ पत्थर सब निकाल दें और इसको बिल्कुल समतल कर लें, और वो स्थान मुख्य जो अपनी खेत है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, जिससे अगर बरसात का पानी ज़्यादा भारी आ जाए तो वो पानी को निकास अपन कर सके, पौध गले नहीं। जब नर्सरी अपन तैयार करते हैं, तो पौध बहुत नाजुक होती है, वो ज़्यादा पानी सहन नहीं कर पाती, ज़्यादा तापक्रम सहन नहीं करता, तो उसके बचाव के लिए अपने को बहुत चीज़ आवश्यक होती है। साथ ही उसमें अपन गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद मिला के और उसको अच्छी तरह से तैयार करके उसमें अपन बीज डाल देते हैं, जिससे अपनी जो पौध तैयार हो जाती है। तो बीज की बुआई और रोपण के समय ऋतु जो

ऋतु वाइज अलग अलग है। जैसे सर्दकालीन की अगर बात करें तो बीज पौध तैयार करने का समय है जून जुलाई, और रोपण का समय है जुलाई अगस्त। और इसमें अगर खाद और उर्वरकों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो अपनी मुख्य जो खेत जिसमें अपन पौधरोपण करनी है उसमें 250 से 300 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई से पहले डाल लें। साथ में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और जब इस अपनी जो पौध है वो रोपण लायक हो जाए तो मुख्य जो खेत है उसमें अपन रोपण करते हैं तो उसमें पहले सिंचाई, हल्की सिंचाई करते हैं जिसे रोपण करते ही वो अंकुरण उसका अच्छा हो, और जैसे ही उसको पौध को उखाड़ें और उसको अपने मुख्य खेत में अच्छी तरह सावधानी पूर्वक लगा दें जिससे उसमें अपने को जो अंकुर जो

0: जाती हैं, तो उन वो भी निकल जाएं तो इनका अपनी जो फसल है उसमें निकाई गुड़ाई किसान भाइयों को अवश्य करनी चाहिए, जिससे अपनी फसल अच्छी बढ़वार करे और अच्छी उपज इससे मिले। और फलों की तुड़ाई की अगर बात करें तकनीकी तरीके से, तो फलों की तुड़ाई करते समय ज़्यादा कड़े फल नहीं करते हैं, जिसमें उसमें बीज ज़्यादा बनने नहीं चाहिए, कच्चा फल हो जो अच्छा पक्के मतलब अच्छी साइज में हो गया हो, तो उसको अपन समय समय पर इसकी तुड़ाई करते रहना चाहिए और बाजार अपने को भेज देना चाहिए, जिससे उसके अच्छा बाजार भाव अपने को मिल सके। देखो ये तो अपने जो ग्रामीण भाई कार्यक्रम से उनको बैंगन की उन्नत तकनीक के बारे में थोड़ी सी अपन ने जानकारी दी, आगे अपन बातचीत भेंटवार्ता किसान भाई को सुनाएं, उससे पहले सुनवाएं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: हाँ तो देखो कार्यक्रम सुन रहे भैया ने थोड़ी सी एक भेंट वार्ता सुनवाएं, बागवानी से पाए अधिक आय, और संत का नंगला पूनखर पंचायत समिति मालाखेड़ा के प्रगतिशील किसान भरतलाल मीणा से ये भेंट वार्ता है, तो आओ सुनो ये भेंट वार्ता।
7: किसान भाइयों राम राम। आज हम गांव पूनखर पंचायत समिति मालाखेड़ा के किसान भरतलाल मीणा जी से बात कर रहे हैं। आप एक प्रगतिशील किसान हैं जो कि बागवानी में रुचि रखते हैं, आपने अपने फार्म पे कई तरह के फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, किस तरीके से ये परंपरागत खेती से हटके फलदार वृक्ष की ओर इनका रुझान हुआ और किस तरीके से ये आगे बढ़े, आइएगा इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। भरतलाल जी राम राम साहब।
8: राम राम साहब। राम राम साहब जी।
7: भरतलाल जी, आपके कितने बीघा जमीन है?
8: जी मेरे 23 बीघा जमीन है।
7: तो अच्छा, इस 23 बीघा में आपने कौन कौन से फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, एक बार थोड़ा सा बताएं।
8: देखिए जी, इसमें मैंने आंवले लगा रखे हैं
7: जी, और
8: नींबू लगा रखे हैं, नींबू के अलावा कटहल है, आम है, अनार है और बिलपत्र है।
7: पपीते भी हैं?
8: हाँ पपीते भी हैं।
7: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत सारे फलदार वृक्ष आपने लगा रखे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे करीबन कितने कितने पौधे आपने किस किस चीज़ के लगा रखे हैं और कितने बीघा में आपने ये बगीचा लगा रखा है?
8: देखो जी, शुरुआत में तो मैंने 1 हेक्टेयर जमीन में लगाए थे आंवले के पौधे
7: जी,
8: तो उनमें मुझको प्रॉफिट हुआ तो मेरा रुझान बगीचे की तरफ बढ़ गया
7: जी।
8: तो उसके बाद मैंने नींबू लगाए, तो 8 बीघा जमीन में तो मैंने नींबू और आंवले मिक्सचर लगा रखे
7: जी,
8: एक लाइन आंवले की है और एक लाइन नींबू की है, तो उसमें दोनों फसल साथ साथ लेता हूँ मैं। फिर कुछ ठेकेदार लोगों ने बताया यार इसमें तो नींबू आंवले अलग अलग होने चाहिए थे, तो फिर मैंने 8 बीघा जमीन में दोबारा आंवले लगाए हैं और आंवला का डिस्टेंस 25x25 फुट का रखा है
7: जी,
8: वो भी बढ़िया है।
7: आंवला बता सकते हैं कौन से?

0: किस्म आपने लगाई है?
1: आंवले की किस्म देखो, चकैया है, बढ़िया
0: जी जी जी
1: अच्छी चमकदार है, अच्छा साइज भी अच्छा है।
0: तो जब आपने सबसे पहले आंवले का बगीचा लगाया तो कहाँ से पौधे लाए, कहाँ से आपने प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लाए, कैसे लगाया, क्या थोड़ा सा बताएं
1: जी। ये आंवले के पौधे मैंने अपने अलवर जो नारायण नर्सरी है,
0: जो हमारी सरकारी नर्सरी है,
1: हमारी जो सरकारी नर्सरी है जी, नारायण विलास, वहाँ से मंगाए थे।
0: हाँ अच्छा, आपने करीबन इस समय आपके कितना पौधे तो आंवले के हैं, कितने पौधे नींबू के हैं?
1: देखिए जी, आंवले के पौधे 650 के लगभग हैं
0: जी,
1: और नींबू भी 650-700 के लगभग हैं
0: जी। आपने बताया था कि कटहल भी आपने लगा रखे हैं, तो कितने पौधे करीबन आपने कटहल के लगा रखे हैं?
1: देखो जी, कटहल हमने शुरू में एक पौधा लगाया था
0: जी,
1: आज से 15 साल पहले
0: जी।
1: तो उसकी वैरायटी मेरे को अच्छी पसंद आई, उसकी साइज बढ़िया आई, चमकदार थी, हरा कलर था। तो उसमें से मैंने नर्सरी तैयार करके और कम से कम 100 पौधे लगा रखे हैं, जिनकी उम्र कम से कम 5-6 साल हो गई, तो उनमें भी कटहल आना शुरू हो गया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वयं ही नर्सरी तैयार कर ली। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो 100 पौधे हैं, 5 साल की उम्र है, तो उनमें कटहल आ रही है, तो कटहल कितना वजन की कटहल हो जाती है, और क्या एक आध बार आपने मार्केटिंग भी की है, उनको बेचा भी है?
1: जी बिल्कुल, मैंने अपने अलवर मंडी में ही मार्केटिंग की है, और उसके अलावा मैंने ठेकेदार लोगों को भी दिए जो अलवर तक सप्लाई करते हैं। उसमें साइज का अगर अपन उसको पूरा टाइम लें तो उनकी साइज 15 से 20-22 किलो तक भी हो जाती है।
0: जी जी जी जी
1: जी, साइज बड़ी अच्छी है।
0: कटहल के अलावा आपने बेलपत्र के बारे में भी बताया, अनार के बारे में भी बताया, तो बेलपत्र के कितने पौधे हैं आपके पास?
1: बेलपत्र के पौधे लगभग 100 हैं
0: जी
1: जी, उसमें कुछ देसी हैं और कुछ ग्राफ वाले हैं,
0: ग्राफ्टेड भी
1: ग्राफ्टेड हैं, उनकी साइज 3.5 किलो 3.5 किलो तक की है
0: जी,
1: और जबकि देसी पौधे हैं उनका साइज 1 किलो 1.25 किलो के लगभग है।
0: जी जी जी जी जी। आप पपीते के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, हमारे जो किसान भाई आकाशवाणी सुन रहे हैं वो कई किसान भाई पपीता लगाने के इच्छुक रहते हैं, तो आपने कितने पौधे लगा रखे हैं, किस तरीके से आपने पपीते में आप आगे बढ़े?
1: देखिए जी, पपीता मैं लगातार 5-6 साल से कर रहा हूँ
0: जी।
1: तो पपीते में मेरा अपना खुद का नॉलेज ऐसा है कि एक तो ये जहाँ पर पानी का रुकाव होता है उस जगह नहीं लगाना चाहिए, जहाँ पानी का भराव होता है
0: बिल्कुल,
1: इसको आपकी जहाँ पर ऊंची जमीन है जहाँ पानी नहीं भरता उस जगह लगाओ। और लाइन से लाइन मैंने 8 फुट लगा रखी है और पौधे से पौधे 6 फुट का डिस्टेंस दे रखा है, और ये नर्सरी लगाई खुद ने, और उससे कम से कम 1900-2000 के लगभग पौधे लगा रखे हैं, जो मैंने अप्रैल 2026 में लगा दिए थे, अब उसमें फ्रूटिंग और फल चालू है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपके फार्म पे देख रहे हैं कि आपने कई सारी पौध भी तैयार कर रखी हैं, ये किस चीज़ की पौध आपने तैयार कर रखी हैं, और किस चीज़ की नर्सरी आप कर रहे हैं, और कैसे क्या कर रहे हैं ये?
1: देखो जी, मैंने जो पपीता की पौध तैयार की है नर्सरी, उसमें लगभग मैंने 3-4 हज़ार पौधे तैयार किए हैं। तो उनको मेरे पपीता का बगीचा में आके जो देखता है उनको इसकी तरफ रुझान बढ़ जाता है, तो वो पपीता की नर्सरी में जो पौधे हैं उनकी खरीद करते हैं, तो मैंने पपीते के पौधे बेचे हैं। इसके अलावा जो कटहल के नर्सरी लगा रखी है उसमें भी मेरे खुद के यहाँ आके जो कोई कटहल के पौधों को देखता है तो उनका रुझान उतर बढ़ा है, इस वजह से मैंने कटहल की नर्सरी भी लगा रखी है।
0: तो आपने जब नर्सरी लगाई तो आपको पॉलीथीन की भी आपने व्यवस्था की होगी, और बीज भी आपने लगाया होगा, तो ये पॉलीथीन वगैरह कहाँ से आप लेके आए, और कैसे नर्सरी तैयार करते हो आप, थोड़ा सा?
1: देखो, अपनी सरकारी नर्सरी जो अलवर नारायण विलास है वहीं से हम पॉलीथीन की व्यवस्था करते हैं, वहीं से लाते हैं।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बगीचा भी लगा रहे हैं, उसके अलावा फलदार वृक्षों के नर्सरी तैयार करके उनको बेच भी रहे हैं, तो आप इनके पौधों को कहाँ बेच रहे हैं, ये जो नर्सरी के पौधों को कहाँ बेच रहे हैं?
1: देखिए जी, हमारे पास जो राजगढ़ शहर पड़ता है वहाँ कई नर्सरियाँ हैं, तो वो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, वो इधर आके जब बगीचे को देखते हैं तो उनका भी है कि क्वालिटी अच्छी है, तो मैं यहीं राजगढ़ आसपास यही नर्सरियों को बेचता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आप जानकारी दे रहे हैं। हम आपसे सब ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो नींबू और आंवला बहुत बड़े स्तर पर लगा रखा है, तो इनका जो फल आता है उनकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, ठेके पे देते हैं या स्वयं बेचते हैं, किस तरह से ठेकेदारों से संपर्क करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं
1: जी। मैं आंवला और नींबू को तो ठेके पर ही देता हूँ, यहाँ ठेकेदार लोग आसपास से इधर अपने जयपुर चौमू साइड से भी आते हैं, और वैसे लोकल ठेकेदार भी हमारे यहाँ गाँव में हैं, उनको बेचता हूँ।
0: तो वो लोग किस हिसाब से, ठेका कैसे लिया जाता है, कैसे देते हैं आप ठेका?
1: देखो जी, ठेका है जो ये पर पौधे के हिसाब से लेते हैं, जैसे आपके पास आंवले हैं तो उनमें वो पर पौधे के हिसाब से उसकी एवरेज लेते हैं कि इतना फल हो सकता है, उस हिसाब से मार्केटिंग के हिसाब से वो ठेके में लेते हैं। तो ठेके में 1 बीघा आंवले में लगभग 50-55 पौधे लगते हैं, तो आपका

0: 1 लाख से 1.5 लाख तक का आराम से बिक जाता है।
1: अभी जानना चाहेंगे कि जो आपने बगीचा लगा रखा है इसमें सिंचाई किस पद्धति से आप सिंचाई करते हैं सर?
0: देखो जी, जो पपीता में सिंचाई करता हूँ मैं ड्रिप सिस्टम से करता हूँ।
1: जी जी जी।
0: और सर जो अपने और स्प्रिंकलर भी है।
1: अच्छा अच्छा।
0: आंवले में उनका भी प्रयोग करता हूँ।
1: उनका भी प्रयोग करते हैं
0: जी।
1: कई बार हमने देखा है कि बगीचे में उर्वरक और खाद प्रबंधन भी एक अहम रोल अदा करता है, तो खाद का प्रबंधन, उर्वरक का प्रबंधन किस तरह से आप इन फलदार वृक्षों में करते हैं?
0: देखिए जी, मैंने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखी है
1: जी।
0: तो मेरे पास खुद के पास 4-5 भैंस हैं, 4-5 गाय हैं, तो उनके जो गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट बना के जब डालता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर रहे हैं
0: जी।
1: फलदार वृक्षों के बीच में अमूमन जगह छोड़ते हैं, जगह रहती है, उस जगह का सदुपयोग आप कैसे करते हैं?
0: जो बीच में जो फलों के पौधे के बीच में जो जगह है उसमें मैंने हल्दी लगा रखी है।
1: किन पौधों के बीच में?
0: जो अपने पपीते के पौधे हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस है उनमें हल्दी लगा रखी है
1: जी।
0: और गेंदे के फूल लगा रखे हैं, और उनमें मैं अपने गाजर, मूली, पालक, मेथी ये लगा रखा।
1: इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग करके भी आप अतिरिक्त आमदनी भी इनसे ले रहे हैं
0: जी।
1: तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने जो परंपरागत खेती से हटके आप बागवानी में आए और आपने नींबू का, आंवले का, कटहल, पपीता, बेलपत्र के ये पौधे लगाए, बगीचे लगाए, तो इनमें कैसा मुनाफा आपको दिख रहा है? आमदनी के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है?
0: देखो जी, पारंपरिक खेती में किसान को कुछ नहीं पता है
1: जी,
0: और इसमें अपनी पारंपरिक खेती से लगभग 4 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है
1: बागवानी में।
0: बागवानी में, और देखो इससे हमको कई फायदे हैं। हरा भरा हरियाली मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हमारा पर्यावरण सुधार होता है। तो मेरा रुझान हमेशा पर्यावरण के ऊपर रहा है। मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और मुनाफा कमाएं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बागवानी करते हैं। तो आपने सारे काम आप मशीनरी से करते होंगे, तो कृषि यंत्रों में आपके पास क्या, छोटे ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर भी है आपके पास?
0: जी, मेरे पास पहले जो बड़ा ट्रैक्टर था 4-3600, उससे बागवानी में थोड़ा अड़चन आती थी क्योंकि नैरो जगह में उसकी जुताई नहीं हो पाती थी। तो मैंने पिछले साल ही नया ट्रैक्टर निकलवाया है जो छोटी साइज में है, उससे मेरे लेबर में जो खर्चा आता था वो अब कम लगता है।
1: यानी कि मिनी ट्रैक्टर जो बागवानी में काम आता है वो आपने लिया है और उससे आप इस समय काम कर रहे हैं?
0: जी, मिनी ट्रैक्टर में रोटावेटर लगा रखा है तो उसकी निलाई गुडाई आराम से हो जाती है।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को आप दे रहे हैं। हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जो किसान साथी रेडियो सुन रहे हैं, आकाशवाणी सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें कि उनकी आमदनी बढ़े और उनके चेहरे पे खुशहाली आए?
0: देखिए, मैं सभी किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बागवानी करें। बागवानी से अच्छा विकल्प किसान के पास कुछ भी नहीं है। ये हमको सारी चीज़ें देता है, हमको पैसा भी देता है, और उसके अलावा हम कई तरह से सारे पर्यावरण में सुधार कर रहे हैं।
1: ऑक्सीजन भी भरपूर मिलती है,
0: ऑक्सीजन भी भरपूर मिलता है, हरियाली बनी रहती है, जिससे हमको फायदा ही फायदा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत लाल जी, जो कि संत का नंगला गांव पूनखर पंचायत समिति मालाखेड़ा से आप हमसे बात कर रहे थे। हमसे बात करने के लिए, आकाशवाणी से बात करने के लिए, और हमारे सभी किसानों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। राम राम साहब।
0: राम राम साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तो भाई देखो, अभी ये आपने सुनी एक भरतलाल मीणा जी की एक भेंट वार्ता, बागवानी से पाएं अधिक आय, और किसान भाइयों को इस पे ध्यान देना चाहिए और बागवानी की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए जिससे अधिक आय किसान भाइयों को मिल सके। और अब ग्रामीण भाइयों को सुनवाते हैं कुछ संदेश।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: हेलो हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं, कोई भी रेजिडेंट

0: रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अब देखो भी ग्रामीण बहन सुनो या माता दीन और पार्टी गार्ड लोकगीत मारा बजरंग वाला जी। और अब ग्रामीण बहन देना थोड़ी सी जानकारी बैंगन के प्रमुख रोग व प्रबंधन विषय पर। तो देखो बैंगन की एक ऐसी फसल है जो वो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी लाभकारी और अच्छा उत्पादन और पैसे देने वाली होती है। तो इसमें जो प्रमुख जो रोग होते हैं वो फसल को नुकसान कर देते हैं और अपना जो आर्थिक स्थिति चौपट कर देते हैं। इसमें प्रमुख रोग जो होते हैं उसमें पत्ती धब्बा रोग है। उसके प्रबंधन के लिए अपन जो बोर्डेक्स मिश्रण या फिर 2 ग्राम कोपरोक्सी क्लोराइड या 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर जल की दर से छिड़काव करके और साथ में रोग रोधी जो किस्मों का चयन करके इस रोग से अपन बचा जा सकता है। दूसरा है उकठा रोग। ये रोग एक जीवाणु से फैलता है। इसमें जो पौधा है वो मुरझाने लग जाता है और जैसे उखड़ जाता है ऐसे सूखा सूखा हो जाता है, मुरझा

सूखने लग जाता है, पत्तियां गिरने लग जाते हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए अपने जो सरसों कुल की जो सब्जी है, जैसे फूल गोभी के साथ फसल चक्र अपना के इस जो रोग से अपन बैंगन की फसल को बचा सकते हैं। साथ में बोर्डेक्स मिश्रण 2% का छिड़काव करके भी इससे राहत अपन मिल सकती है। और जो तीसरा जो रोग है वो पत्ती धब्बा जो रोग है, ये भी बैंगन की फसल को काफ़ी प्रभावित करता है। इसमें जो जैसे ही पे अपने कोई रोग नज़र आए तो अपने इनको जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ के और कहीं अलग गहरे गड्ढे में दबा दें या इनको जला दें। साथ में फफूंद नाशक दवाओं का इसमें छिड़काव करें। और एक मोज़ेक जो रोग आ जाए, ये तंबाकू मोज़ेक विषाणु द्वारा होता है। पत्तियों पर चितकबरापन व अल्प विकसित होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इस रोग का जो मुख्य रोग वाहक है वो माऊ है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन तंबाकू का सेवन करने वाले बैंगन की नर्सरी में एक तो उनको काम नहीं करना चाहिए। तंबाकू से संबंधित रोग है और इसमें डाईमिथाइड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इसमें दवा का छिड़काव करके इस रोग से अपन ये अपनी जो मुख्य फसल है उसको बचा सकते हैं और बैंगन की फसल से किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ में ये तो देखो अपने किसान भाइयों को बैंगन की फसल के रोगों के बारे में थोड़ी जानकारी दी। साथ में अगर मौसम की बात करें तो आज का अधिक तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ में हल्की से थोड़ी भारी बारिश होने की भी पूरी संभावना है। और देखो कार्यक्रम को समय हो रहे पूरा, तो चाल चाल तक किसान भाई से लेवा ग्रामीण भाई जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे लेवा इजाज़त। जय जवान जय किसान।

अभी ग्रामीण श्रोता ग्राम भारती कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे श्रीलंका बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल कुछ ही देर बाद दिल्ली के इंद्र से लिया जाएगा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। ये स्वर है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अप्रैल फूल। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है इस कार्यक्रम की आखिरी भेंट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम हिम्मत।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें। नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें, अनमोल गीतों की यादों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके 10वें एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते जयंत जी।
0: तो राजीव जी, आज के एपिसोड में क्या लेकर के आए हैं आप?
1: देखिए, फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा जो मैंने कुछ एपिसोड पहले बात कही थी
0: जी, जी।
1: कि नए फिल्मों के गाने जो है वो एक अलग ही दौर आ गया है, जिसमें प्रमोशंस नाम के वजह से म्यूजिक कंपनीज अपने आप चुनते थे कि किस गाने को प्रमोट करना है। मतलब उनके हिसाब से जो पॉपुलर हो सकते थे गाने, और
0: उन्हीं गीतों को लिया जाता था।
1: जी हाँ, उनसे जी। उनकी कमाई भी हो सकती थी कॉलर ट्यून के जमाने में या सीडीज के जमाने
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: लेकिन वैसे उसी कारण के वजह से कुछ अनमोल यादें हमने खो दी, अगर हमने उस वक्त याद नहीं रखी। तो मैंने ये दो गाने 2000 के बाद के आज के श्रृंखला में चुने हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस 80s के गाने से।
0: हाँ।
1: जिसके बाकी के गाने बहुत चले, जिस अच्छा। फिल्म के बाकी के गाने बहुत चले, फिल्म भी बहुत चली। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर।
0: कामचोर, हाँ,
1: और कामचोर में अगर आप देखेंगे तो पूरा हिट परेड था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: उसमें एक गाना जो है वो थोड़ा बहुत कम चल गया, और बाकी उसमें से एक गाना था वो थोड़ा कम चला और बाद में दब भी गया। बहुत ही मीठा प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारी मेलोडी थी, इंदिवर जी का लिखा हुआ ये गाना,
0: और राजेश
1: रोशन का म्यूजिक
0: जी जी,
1: किशोर और लता मंगेशकर की आवाज,
0: और गीत के बोल हैं तुम मेरे स्वामी।
1: जी
0: आइए सुनते हैं।

0: कामचोर फिल्म का ऐसा गीत जो बहुत कम सुना जाता है और जिसका जिक्र भी नहीं होता, हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और अब 2000 के बाद की फिल्मों के दो गीत आप सुनवाने वाले हैं राजीव जी।
1: जी हाँ, आपने वो जो बहुत ही जबरदस्त मेलेडी सुनी आपने, हाँ, कामचोर फिल्म में,
0: जी जी,
1: उसी मेलेडी की तरफ मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। उसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही गहरी मेलेडी, और ये गाना अनु मलिक जी ने कंपोज किया है।
0: अच्छा,
1: ले चले डोलियों में तुम्हें, जिसे रूप कुमार राठौड़ और चित्रा जी ने गाया है फिल्म फिलहाल के लिए। फिलहाल का जो शीर्षक गीत था जी, आशा जी ने गाया हुआ, वो जी, बहुत चला। ये गीत फिर से मेरे रोंगटे खड़ा करता है।
0: आइए सुनते हैं।
2: ले

0: फिलहाल फिल्म का वो गाना जो बहुत कम सुना गया हमने सुना। और राजीव जी, आज के एपिसोड का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: देखिए, ये सारे गाने अनकहे गाने भी बोल सकते हैं। और हाँ, मेरा अगला गाना अनकही फिल्म से है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जो 2006 में आई
0: जी,
1: और उसमें बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत ही कम गाने लिखने वाले इसके लिरिसिस्ट थे, सुब्रत सिन्हा। लेकिन मार्केट लीडर, जो आज भी मार्केट लीडर है, प्रीतम साहब का कंपोज किया ये गाना। कुणाल गांजावाला ने गाया है, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था।
0: आइए सुनते हैं अनकही फिल्म का ये गाना।

0: क्या बात है, अनकही फिल्म का ये जो गीत हमने सुना, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा भी ना था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के गीतों की यादों से हमारी मुलाकात होगी, और बहुत खूबसूरत ये सिलसिला अनमोल यादों का चल रहा है। अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए श्रोताओं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अनमोल यादें।
3: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: अनमोल यादें।

हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री बी आर गुदगुदी की लिखी मूल कन्नड़ नाटिका का हिंदी रूपांतर शकुन का शीनू।

0: सरसुती ए सरसू, जरा जल्दी यहाँ आओ।
1: आती हूँ।
2: क्या है ये सुबह सुबह, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? तुम तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे कोई सर पर आसमान फट पड़ा हो। कहो क्या बात है?
0: ओहो, क्यों बिगड़ती हो सरसू? वो देखो उधर, उस खिड़की के उस पार, उस पेड़ पर।
2: पेड़ पर?
0: हाँ।
2: क्या है? अरे होगा कोई काला बंदर। क्यों जी, उसको दिखाने के लिए ये सब करना था तुम्हें?
0: ओहो,
2: है तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर तुम्हारे सातों पुत्र पुत्रियां जागेंगे और घर में संगीत सभा रचाएंगे। मुझे क्या चैन से काम करने देना है या नहीं?
0: देखो सरसू, तुम यूं ही बिगड़ जाती हो। जो तुम्हें पेड़ पर दिखाना था वो काला बंदर नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें अकल कम है। वो देखो आंख फड़फड़ाता हुआ बैठा है। उसी के बारे में कहना था मुझे। हाय राम, आज क्या अशुभ समाचार मिलेगा? मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन लेकर उनको नमस्कार करूं, मगर देख रहा हूँ इस अनिष्टकारी उल्लू को। मेरे नाना जी कहते थे कि उल्लू जैसा मनहूस अनिष्टकारी दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सुबह सुबह कोई अनिष्टकारी उल्लू को देख ले तो समझ ले कि किसी बड़ी विपत्ति का उस दिन उसे सामना करना पड़ेगा।

0: हाय राम, हाय राम, अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
1: वाह भाई वाह, इस इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में तुम तो जामवंत के युग की बात कर रहे हो। क्यों जी, आपको मालूम नहीं कि रोज हमारा नौकर सुबह उठकर पिछवाड़े में काम करते समय उस उल्लू को देखता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ? अजी, ये सब पागलपन छोड़िए ना।
0: नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं इस मनहूस उल्लू को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देने का प्रबंध करूंगा। उसको आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर एक बार भी इधर झांकने का नाम नहीं लेगा।
1: हाय मेरे भाग्य। अरे अरे, देखो जी, ये उस तरह मचा ना, पिछवाड़े में बहुत कांटे हैं। अरे उस उल्लू को उसके हाल पर छोड़ दो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जी सुनो तो। ओफो, कुछ भी करो, तुम तो मेरा कहना मानने वाले नहीं। मुझे तो अंदर बहुत काम पड़ा, मैं जाती
0: हूँ। हाय भगवान, हाय भगवान, मर गए। अरे सर फटा जा रहा है, कोई है? ए सरसू, सरसू आओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। एक लोटा पानी लेती आओ, पानी।
1: फिर हम, ये क्या हो गया? बदन सब खून से भरा हुआ है। अरे हम, ये क्या कर रहे हो तुमने? अरे मैं जो कह रही थी उसको तुमने नहीं सुना, और ये बुद्धूपन का काम किया तुमने। देखो जोर से घाव को पकड़ लो, मैं अंदर जाकर अभी कपड़ा लाती हूँ। ठीक है। क्यों जी, तुमने उस उल्लू को पाठ पढ़ाने के बदले खुद पाठ पढ़ लिया ना?
0: सरो, तुम हमेशा सभी बातों को हंसी मजाक समझती हो। मैंने तो पत्थर का निशाना उल्लू को ही बनाया था, मगर वो पत्थर थोड़े में ही फिसल कर पेड़ की उस टहनी से टकरा कर वापस मेरे सर को लग गया।
1: अरे ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम अर्जुन के वंशज हो, और तुम्हारा निशाना हमेशा बराबर ही लगता।
0: सरू, मैंने जब से इस मनहूस उल्लू को देखा है तब से ही मनहूस समय का अनुभव कर रहा हूँ। पता नहीं सरू, पता नहीं, मुझे मुझे आज एक तरह की घबराहट सी हो रही है।
1: ओफो, क्या हुआ है जी तुम्हें? तुम्हें क्यों घबराहट होने लगी? तुम्हारी इस तरह की घबराहट को मिटाने के लिए कोई दवा किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। बस चलो, अब बहुत हो चुका।
0: सरू, तुम नहीं जानती मेरे मन में क्या हलचल मच रही है।
1: वो क्या है?
0: सरू, कल रात पड़ोस के घर का कुत्ता रोता था, और उसमें वर्षा भी नहीं थी। उसी समय घर के छत पर बिल्ली भी रोती थी।
1: हाँ, और आज उस उल्लू के सुबह सुबह ही दर्शन करने पड़े।
0: हाँ।
1: इसीलिए हमारे नाना जी कहते थे कि ये सब अशुभ शकुन किसी अनिष्टकारी आपत्ति की सूचनाएं हैं। यही ना?
0: तुम तो मेरी सभी बातों को मजाक ही समझती हो। कल मैंने सपने में क्या देखा मालूम है? कल
1: क्या?
0: मैंने सपने में माँ को कुएं में गिरते देखा।
1: वाह वाह।
0: माँ कुएं से पानी उठा रही थी, यकायक रस्सी टूट गई। घड़ा कुएं में गिरते ही माँ भी उसके साथ ही कुएं में गिर गई। इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं ये सब अशुभ शकुन माँ पर कुछ असर ना करें।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तुम्हारे तर्क का भी जवाब नहीं। अजी, तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए टूटी हुई रस्सी ही हमेशा इस्तेमाल होती है। हमेशा माँ यही कहती थी कि इस घर में नई रस्सी शायद तभी आएगी जब तक कि शायद कोई कुएं में गिर ना पड़े।
0: ओ, ओ, सरसू।
1: पर सुनो, उसी विचार को तुमने अपनी खोपड़ी में रख लिया है और सपने में उस आपत्ति का साक्षात्कार कर लिया। बस यही है आपके मन का भ्रम।
0: नहीं भाई नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है कि माँ के बीमार होने का पत्र पिताजी से आया था, और उसमें ये भी लिखा था कि बीमारी और बढ़ गई तो वो तार भी भेजेंगे।
1: इसीलिए साहब को घबराहट हो रही है।
2: माँ, माँ, माँ स्कूल जाने का समय हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ।
0: सरू, अगर माँ को कुछ हो गया तो? धत, तेरी की छींक दिया। क्यों रे शैतान के बच्चे, तुझे एक ही बार छींकना था क्या? चल जल्दी एक बार और छींक, छींक, छींक, नालायक कहीं का।
2: कोशिश तो करता हूँ बापू छींकने की, लेकिन नहीं हो सकता।
0: नहीं हो सकता, निकम्मा कहीं का। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, निकल जा।
1: सोजी, उस बिचारे पर क्यों बिगड़ते हो?
0: तू चुप रह, तुझे तो हमारे संप्रदाय सभ्यता सभी ढकों से डिग पड़ते हैं। हाय प्रभु, मेरी रक्षा तुम्हें करना प्रभु।
1: ठीक है महाशय, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर अब क्या तुम तौलिया लेकर नहा कर मेरी रक्षा करोगे? सुनो, समय बीता जा रहा है।
0: ठीक है देवी जी, तुम्हारी तो माननी ही पड़ेगी। देखो सरू, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी का तो बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं यूं गया और नहाकर यूं आया।

0: क्या रे?
1: कैसे गिर गए? ओहो, मैं समझी तू कोई पुराना पेड़ गिरा। तौबा है, मैं तो तुम्हारी इन सब हरकतों से तंग आ चुकी।
0: अरे देखो तो सही, उस कोने
1: क्या
0: में
1: देखूं?
0: उस कोने में देखो, उस दरिद्र उजली छिपकली को, वो मेरी बाई ओर गिरी और मैं उससे बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा तो साबुन से पांव फिसल कर गिर पड़ा। ओहो, मेरा वो पांव ही टूट गया। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं क्या करूं?
1: तुम्हारी अकल का भी जवाब नहीं है। छिपकली दाई ओर पड़े या बाई ओर, तुमने तो अकलमंदी दिखाने जाकर पांव तोड़वा दिया। शकुन का भूत कहीं तुम्हें खा ही ना ले।
0: क्या कहती हो जी, तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है। मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
1: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
0: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो।

0: तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है। मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
1: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
0: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो। हाँ, मुझे याद आया, परसों में गाय का घी लाया था ना सरू, उसको डालकर एक दिया जलाओ और उस दिए को भगवान के सामने रखो। तुम नहीं जानती सरू, इससे पीड़ा का परिहार हो जाता है।
1: बड़े आए घी का दिया चलाने वाली, यहाँ तो बच्चों को तेल भी नसीब नहीं और ये चले हैं गाय के घी का दिया चलाने।
0: सरू,
1: वो क्या भगवान एक ही दिया जलाने से संतुष्ट नहीं होते? बस बस बस, जल्दी स्नान समाप्त करो।
0: ठीक है बाबा, करता हूँ। जय गंगा जमा।
1: क्यों जी, स्नान कर लिया? ठीक, अब भगवान के सामने दिया जला हुआ रखा है, जाओ। हाँ, और कॉफी भी तैयार है।
0: सरू,
1: क्या है?
0: अमावस्या परसों ही होने वाली है ना?
1: हाँ, तो क्या हुआ?
0: वो इसलिए कहता हूँ, वो बस मनहूस कुत्ता रात भर रोता रहा। हाय भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्ते के रोने का और माँ की तबीयत से क्या संबंध है।
0: ओफो सरू,
1: ओफो, मैं कहती हूँ छोड़ो जी, बेकार क्यों सोचते हो? कुछ नहीं होगा माँ को, अगर कुछ होगा भी तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, उससे माँ ठीक हो जाएंगी। जल्दी जलपान कर लो और डाक खाने जाकर ट्रंक कॉल करो, माँ की तबीयत की पूछताछ करो और आते समय बाजार से सब्जी भी लेते आना।
0: अच्छा लाओ कॉफी, मैंने पूजा भी कर ही ली है। ये बिल्ली क्यों मेरे सामने से चली? इसका हमारे घर का दूध ही मुंह लग गया है, मनहूस कहीं की।
2: पोस्टमैन, नमस्ते श्रीनिवास जी, आपके लिए तार है।
0: तार? हाथ पांव ठंडे पड़ गए। देखो भाई, ये तार मेरा ही है ना, और एक बार देखो तो सही।
2: मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ये तार आपका ही है।
0: ये क्या ही सुबह सुबह मुसीबत भाई, मुझे जरा बता देना ये तार कहाँ से आया है?
2: घटक प्रभास से आया है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, सलाम साहब।
0: हाय भगवान, ये डाकिया क्या लाया सुबह सुबह? माँ की हालत बिगड़ गई होगी, माँ को घटक प्रभा ले गए होंगे। हाय मेरी माँ, अरे मेरी माँ मर गई। सरू, ए सरू जल्दी आओ। हाय भगवान, ये क्या क्या तूने? सरू सरू आओ, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं जैसा सोचता था वैसे ही हुआ। हाय भगवान, मुझे अनाथ बना दिया, मुझे अनाथ बना दिया भगवान।
3: क्यों रो रहे हो?
0: आजा गोपी, आजा बेटे, तुम्हारी दादी चल बसी।
4: दादी चल बसी, पिताजी को तार आया है।
1: सर, हाय राम, क्यों जी, क्या ये खबर सच है? हाय राम, ये क्या हुआ? खैर जाने दीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए माँ जी की भी तो उम्र काफी थी, भगवान की चाहत के सामने किसका बस चलता है। माँ जी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही चाहती थी। क्यों जी, और क्या लिखे है जी तार में?
0: और क्या लिखना बाकी है, आखिर में वो अनिष्टकारी शकुन ने अपना प्रभाव दिखा ही दिया है।
2: शीनू, और श्रीनिवास, शीनू।
1: वो देखो, आपके मित्र रामचंद्र जी आ गए।
0: कोई आया हो तो अब क्या होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका है।
2: क्या हुआ भाभी जी, शीनू को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है?
1: भाई साहब, इनके घर से तार आए हैं, उसमें इनके माँ जी के गुजर जाने का समाचार लिखा हुआ है।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: हाँ रामू, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं किए। नहीं किए,
2: रो मत शीनू, रो मत, धीरज रखो। लाओ ये टेलीग्राम मुझको दो। He has been promoted and transferred and all are well in. क्या भाभी जी, आप भी इस बुद्धू की बातों में आ गई?
1: क्यों?
2: इस तार में ये लिखा है कि तुम्हारे बेटे को इंजीनियर की पदोन्नति मिली है।
1: क्या?
2: हाँ, प्रमोशन।
0: प्रमोशन
2: और घटक प्रभा को बदली हो गई है, यानी कि ट्रांसफर।

0: तुम लोग तो बिना तार पढ़े ये सब हंगामा मचा रहे हो। गोकाक के सभी लोग सकुशल हैं, इस तार में ये भी लिखा हुआ है।
1: क्यों जी, बिना तार पढ़े ये सब गड़बड़ी पैदा की गई? मुझे क्या मालूम था रामचंद्र भैया, मैं समझी थी कि ये तार पढ़कर ही मुझे बता रही है।
2: हाँ रामू, सचमुच माँ को कुछ नहीं हुआ क्या?
0: ये क्या कर रहे हो शीनू, गंवार जैसी हरकतें। उठो, मुंह धोकर आओ पहले। मैं तुम्हें मानसिक रोग चिकित्सालय ले जाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊं। तुम तो बहुत भारी शकुन के शीनू हो भाई।
2: रामू, ये शुभ समाचार इसलिए आया कि सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी।
1: अच्छा जी, तो तुम सदा अपनी ही हांकते रहोगे। आखिर भाई साहब ने ठीक ही कहा है, तुम ठहरे जो शकुन के शीनू।
0: शकुन का शीनू, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ये नाटिका सुनी। मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुडगुडी, हिंदी रूपांतरकार एस ए हुनगुंड, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दार भेकर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है फिल्म धड़कन का दो गाना, स्वर उदित नारायण और अर्लका याग्निक के, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

थियों के फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की, फिल्म का नाम जुदाई।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। युगल स्वर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला के गीत को समीर ने लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: प्यार तो होना ही था, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आप सुन रहे थे, रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अब सुनिए जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और अभिजीत की आवाजें फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले, आदित्य नारायण और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है रंगीला। इस गीत को महबूब ने लिखा और धुन बनाई ए आर रहमान ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन

0: 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
0: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के

0: में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ

0: बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वक्त कुछ गीत ऐसे आपके लिए हमने चुने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी को याद कर। तो चलिए, इस वक्त कुछ ऐसे ही भावुक नगमों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, कभी कभी हमारी तलाश किसी किसी खास पर आकर रुक जाती है, तो इसी खूबसूरत एहसास से गुंथा हुआ था ये गीत, दिल को छू लेने वाला नगमा। हमने लिया था फिल्म जवानी दीवानी से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। हाँ, कभी कभी हम किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत सुने जहां कोई किसी के रंग में रंग गया है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। दोस्तों, किसी की यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल के करीब होती है, है ना? होती है ना? तो चलिए इस गीत के माध्यम से हम उन पत्रों को, उन खतों को ढूंढते हैं जो हमने मोहब्बत के नाम लिखे थे

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था कन्यादान। गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है शर्मिली। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अभी वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

तो दोस्तों अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास या यूं कहें कि कसक बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2000

में सेलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

0: था ये सुलझे।
1: आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते, कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो, जिसने कहा था,
1: छोटी सी ये दुनिया

0: यूं ही चलते चलते कदम उनकी राहों में आ गए, न चाहते हुए भी हम निगाहों में आ गए। कहने को लाख बातें थी, आकर लब पर रुकी। हम कुछ न कह सके, बस उसकी पनाहों में आ गए। प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाती रही ये दुनिया, हम इस किस्से को अपना बनाकर ही आ गए।
1: आज

0: मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फ़ायदा दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ ना कहें फिर भी आप जान जाएंगे।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसास से मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने, कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था, हमने छोड़ा बहाना है।

0: तुझे देखकर खिले दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों से शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।
1: मिल गया।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ यूं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे, मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना कहेंगे।

अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बदूर, भाई बदूर। अब

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नशे मन एल्बम का नाम, कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।